0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 5:06 हो चुके हैं। आज तो मौसम ने पूरी तरह अपना रंग दिखा दिया है भाई। ठंडी हवा, बारिश की फुहारें और कई लोग इस समय हमारे दोस्त जुड़े होंगे, फीफा वर्ल्ड कप के भी मज़े ले रहे होंगे साथ साथ, और पुराने गानों को भी रेडियो ऑन कर दिया होगा, कहा होगा नहीं नहीं राइज एंड शाइन प्रोग्राम चलता है सुबह सुबह। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो गुड मॉर्निंग, आप सबका वेलकम है। तो ऐसे में पुराने गानों का साथ भी मिल जाए और आप साथ साथ अपने जो बाकी काम भी है वो भी करते रहें, तो बस ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ आपके साथ और जुड़े रहिए राइज एंड शाइन के साथ। और अगर आपको भी कोई दिल की बात कहनी है, हमें कोई मॉर्निंग्स का ऐसा मैसेज भेजना है जिससे हम तो एनर्जेटिक हों और हमारे लिसनर्स जो दूसरे हैं वो भी एनर्जेटिक फील करें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:17 हो चुके हैं दोस्तों। भाई ये टाइम जो है ना अब उठने का है। कोई कई लोगों का दिल कर रहा होगा अभी भी सोने का, क्योंकि भाई सर्दी बहुत है और ऐसे थुड़ुक थुड़ुक करके कह रहे होंगे अरे नहीं भाई ऑफिस नहीं जाना, थोड़ा सा एक छोटी सी कहते ना छुट्टी मार लेते हैं। बट नहीं नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बॉस वेट कर रहा है आपकी शॉप पे, आपके वर्कर्स भी वेट कर रहे होंगे। तो बस उठ जाइए, हमारे साथ रहिए और अपना मूड चेंज कीजिए और ऑफिस की तरह जो काम करने हैं वो तो करनी है। चलिए भैया, हमारे साथ अब्दुल सायरा बानो जी जुड़े हुए हैं और अब्दुल जी कह रहे हैं नेक्स्ट गाना जो चलाएगा सायरा बानो जी के लिए चलाएगा, तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं आपको। तो भाई आपने जो इतना प्यारा सा मैसेज भेजते हो, हमारा दिल करता है आप सबके मैसेजेस पढ़ें। कल्याणी जी भी जुड़ी हुई हैं और इस समय पार्क में आ चुकी हैं और जॉगिंग कर रही हैं और इंजॉय कर रही हैं अपने इस प्रोग्राम को, राइज एंड शाइन को। टोनी जी साथ दे रहे हैं और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया सभी के लिए, सबको ये कहा है भाई अब मॉर्निंग है, उठ जाओ सारे, हम साथ में अपना ब्लैंकेट भी कहते हैं ना कैप के साथ में ब्लैंकेट वगैरह सब ले लेना, इतनी ठंड है क्योंकि मैं घर से

0: बाहर निकल चुका हूँ, पर क्या करें भैया, ऑफिस तो ब्लैंकेट लेके नहीं जा सकते ना, हम तो सिर्फ एक स्वेटर या जैकेट लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको भी आपके लगता है कि आपको ठंड लग जाएगी तो भाई ये चीज़ें बिल्कुल भूलिएगा मत। आप साथ में सॉक्स भी ले जाइएगा, अगर आपको लगता है आपके शूज़ गीले हो सकते हैं तो वहाँ पर अपने ऑफिस जाके आप सॉक्स ज़रूर चेंज कर लीजिए। थैंक यू टोनी जी इतना प्यारा सा मैसेज भेजने के लिए। सुरेश शर्मा साजदा जी भी जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी इस मॉर्निंग के साथ में प्यारे से राइज एंड शाइन प्रोग्राम को। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आपका ये नेक्स्ट गाना।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:33 हो चुके हैं और मुझे पता है आप सब अपने बेड से उठ गए होंगे. जिनको भी इस मॉर्निंग में जल्दी कहीं काम पे जाना है, जो भी अपने सबको पता होता है कि मॉर्निंग में क्या क्या काम करने हैं, तो अगर उठ चुके हैं तो बस आपको ये बोलेंगे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टैबलेट दी गई है डॉक्टर की तरफ से या आप लोग रेगुलर कुछ लेते हैं, तो उससे पहले हमेशा कुछ खाना ज़रूरी है. अगर आप खाएंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगी. तो इसलिए अगर आपको कोई बनाना लेना है या सीरियल लेना है, ये ज़रूर कीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके अपनी टैबलेट लीजिए. साथ में पानी लेके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा अपना. अगर ब्रेकफास्ट लेके जा सकते हैं, घर से कहते हैं कि हमारे सबके बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई कुछ खा के जाया करो, चाहे भला एक बिस्किट ही खाओ पर खा के ज़रूर जाओ, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को नॉर्मल रखता है. आपको अगर कहीं कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है धूप का या बहुत बारिश का, आपको कुछ खाने को एक दो घंटा नहीं मिला तब भी आप रह सकते हैं, पर अगर आप बिल्कुल खाली ही पेट चले जाएंगे तो कहते हैं कि मुश्किल हो जाती है. तो इसलिए भाई हम तो आपको यही कहेंगे, एडवाइस देंगे प्यारी सी छोटी सी कि भाई कुछ घर से खा के जाइएगा, या अगर घर में भी है तो थोड़ा सा सीरियल वगैरह लेकर बैठ जाइए. चलिए भाई, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कुमार देवी चरण जी, और जो कि इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम

0: को और हम भी कहते हैं थैंक यू सो मच, आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और इंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, भाई थैंक यू सो मच आपका भी। धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ, संजीव निशा देवदोस्त फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू, गुड मॉर्निंग आपको भी। और माला सुमारो जी रेडियो मस्ती को बहुत ही पसंद करती हैं, कहती हैं कि अगर रेडियो मस्ती ना हो तो फिर हमारा दिल नहीं लगता, हमारी जिंदगी जो है रेडियो मस्ती के आगे पीछे चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का साथ देने के लिए, इंजॉय कीजिए अपना गाना। और ये स्पेशली गाना है टोनी जी की तरफ से, और टोनी जी इंजॉय कीजिएगा ये आपकी पसंद का गाना।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Hollywood.
1: Radio Musti.
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: चाय की पहली चुस्की हो या रास्ते की पहली ड्राई हो या ऑफिस की पहली तैयारी, उम्मीद है आपकी सुबह अच्छे मूड से शुरू हो गई होगी। 5:45 हो चुके हैं, चलिए अब देखते हैं आपका राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले
4: एरीज मेष राशि,
3: किसी नए काम का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत आज ही कीजिए। मौका खुद चलकर नहीं आते हैं, उन्हें पकड़ना पड़ता है। शाम तक कोई अच्छी बात चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है और आप परिवार एक हो सकते हैं। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
4: टॉरस वृषभ राशि,
3: आज किसी अपने से दिल खोलकर बात कीजिए। कई बार सुकून जवाबों में नहीं होता, बातों में मिल जाता है। दिन हल्का फुल्का और अच्छा बीतेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
4: जेमिनी मिथुन राशि,
3: फोन पर आने वाली एक खबर आपका मूड बदल सकती है। जिस काम में आपका मन इतने टाइम से लगा हुआ था, आज उसका पूरा होने का समय है। आपकी अच्छी सोच आपका साथ देगी। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
4: कैंसर कर्क राशि,
3: घर का माहौल आपकी नई ऊर्जा देगा। आपको अपनों का साथ मिलेगा, छोटा सा पल आपका यादगार बन सकता है। दिल खुश रहेगा तो बस सब कुछ आसान लगने लगेगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
4: लियो सिंह राशि,
3: आज किसी की तारीफ सुनने को मिल सकती है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिएगा। जो सोच रहे हैं उससे उसी काम पे आगे कदम बढ़ाइएगा, जिससे आपको आपकी जिंदगी बहुत ही सुकून भरी लगे। लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 9।
4: वर्गो कन्या राशि,
3: आज हर बात का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। जो मिल रहा है उसमें ही अपना दिन बिताएं और अच्छा लगेगा आपको कि कोई आप ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। दिन मुस्कुराने की वजह दे सकता है और आपकी लाइफ उसके साथ सेट हो सकती है। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
4: लिब्रा तुला राशि,
3: आज किसी पुराने दोस्त का मैसेज आ सकता है जो आपको ज़िंदगी भर खुशी देगा। रिश्तों को थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छा महसूस होगा। कई बार हमें बहुत टाइम तक किसी इंसान का कोई भी रिप्लाई या उसके पता ही नहीं होता वो इंसान कहाँ है। मुझे लगता है कि आज का दिन आप सबके लिए अच्छा रहेगा। जो भी आज तुला राशि वाले हैं, लकी कलर बनने वाला है पिंक, लकी नंबर है 4।
4: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
3: अपने मन की बात ज़रूर किसी ना किसी को बताएं, बिल्कुल दबा कर मत रखिए। सही समय पर सही कही गई बात जो है रिश्तों को मजबूत करती है। आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
4: सजिटेरियस धनु राशि,
3: कुछ नया सीखने का मौका आज बिल्कुल मत छोड़िएगा। छोटे कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। उत्साह बनाए रखिएगा। बहुत सारे टाइम से आप, हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें चूज़ की हो और कह रहे हो कि मैं क्या सीखूं जिससे मेरी लाइफ अच्छी हो। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ सीखना चाहता है, तो ये टाइम आज आपके लिए बना हुआ है। तो आप बस सीखिए और अपना एडमिशन कीजिए जो भी चीज़ चाहते हैं। लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 3।
4: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
3: आज आपकी लगन पहचान बना सकती है। आपकी काम पूरा होने की खुशी अलग ही होती है, तो खुद को शाबाशी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी चीज़ आपको लगता है कि ठीक है उसके ऊपर अपनी फिंगर रख दो और कहो यही चीज़ है, तो यही आपको आगे मौका देगी नई चीज़ें चूज़ करने का। तो आपका लकी कलर बनने वाला है बेज, लकी नंबर है 10।
4: एक्वेरियस कुंभ राशि,
3: अपने अलग अंदाज को बिल्कुल मत छुपाइए, यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।

0: पिसेस मीन राशि।
1: आज किसी की मदद करने का मौका मिल सकता है। अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। दिन सुकून और खुशी भरा रहेगा। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन। लकी नंबर है 12। ये था आपका आज का राशिफल। एंजॉय कीजिए दूसरे गाने।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से. याचना आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. बुधवार 8 जुलाई को यानी आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमिटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे. इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना. भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं. ये जान लें कि पिछले साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और उसके एक दिन बाद ही ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हुआ था. यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद. प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राष्ट्रसभा में डुबेन लिपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया. प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां सामने आई हैं. उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है जबकि इस मामले में FCC की जाँच भी जारी है. प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब कल राष्ट्रसभा में दिए. रिविया जुहापा के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा. इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री रंजीव वुचित ने कल राष्ट्रसभा में की. इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे. आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर भी शामिल होंगे. ये मामला 2003 में दिए गए कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा है जिसकी शुरुआती लागत 51 मिलियन रुपए से कुछ अधिक थी. बाद में ये मामला लंबे समय तक आर्बिट्रेशन विवाद में उलझा रहा और अंत में इसकी कुल लागत सरकार को 580 मिलियन रुपये तक पहुँच गई. वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल रात राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए. अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ एक टकरा मैच जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की. उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0. अंत में पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया. आज रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच. अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल. मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे तक तेज हवाएं और ऊंची लहर की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिस वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह और दिन के दौरान दक्षिणी तथा पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी. ऊंचाइयों पर कोहरा छाए रहेगा. रात को भी बादल घिरे रहेंगे खासकर ऊंचाइयों पर और हवाई ढलानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. लोगों से उड़ती चीज़ों से बचने तथा ऊंचाइयों पर काम करते समय सावधानी बरतने और खासकर सड़कों पर क्रॉसविंड्स के कारण ज़्यादा सतर्क रहने की मांग की जाती है.

0: और समुद्र में की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार भाटे के समय दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों, आम जनता और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों के साथ आज दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है और तटीय इलाकों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 17 और अधिकतम 18 से 21, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:46 पर जबकि शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:12 हो चुके हैं और आपके मैसेजेस हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई एक दो मैसेजेस साथ साथ ले लेते हैं। आप मॉर्निंग में उठ चुके हैं, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर डोलो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं खाया तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिएगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छा करता है और कहते हैं बॉडी भी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। और साथ में थोड़ा सा अगर पानी पी सकते हैं पहले हल्का सा गुनगुना सा एक कप तो वो भी बहुत अच्छा है। चलिए भाई मैसेजेस के साथ शुरू करते हैं। छाया सुखी जी जो कि सुबह 4:35 पर उन्होंने मैसेज कर दिया था, उनका हम मैसेज अब पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा था, इतना बड़ा सा। और उन्होंने कहा कि रेडियो मस्ती के साथ में हमारी ज़िंदगी इवॉल्व हुई है और कहते हैं कि हम रेडियो को इतना सुनते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ना फ्यूल भर देती है रेडियो मस्ती, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं और मोस्टली लेडीज़ का जो पूरा दिन सुबह और शाम है वो गुजरती है किचन के अंदर। तो मैं भी किचन से ही मैसेज लिख रही हूँ और बस सबको बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए भाई रवीना जी हमारे जुड़े हुए हैं, उनके नेफ्यू क्रिश का आज हैप्पी बर्थडे है और मामा विधि, पापा सतीश, चाचा टिक, नानी दादी काजल, जीजू नतीश, शौर्य एंड परमेश्वर धुरसन एंड सुखा सिंह एंड हरधुन एंड सिबलक फैमिली उनको रोजिल से विश कर रही हैं और उन्हें बोल रहे हैं अरे भैया तुम्हारा प्यारा सा बर्थडे है, बहुत अच्छे से गुजारिएगा। तो चलिए आज अलविना जी का भी बर्थडे है और

माँ भारती उन्हें विश कर रही हैं और बोल रही है यू आर द बेस्ट बच्चा। क्या बात है भाई, हेमलता जी भी साथ हैं। आज उनकी नीस एल्विना यानी उन्हीं का ही बर्थडे है और उनको ग्रैंड पापा विश्वानंदा, हेमलता, वर्षिका, अभिनव, वर्षीना, वर्षाली, शिव, दिव्यांशी एंड दिव्यांश, विपुन, गंगू, मंग प्रभाल फैमिली उन्हें विश कर रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि ऐसे हमेशा खुश रहो। कहते हैं ना कि जिंदगी में ये जो नंबर्स हैं बदलते रहते हैं, पर बर्थडे तो भैया इंपॉर्टेंट होता है, तो वही लेके चले जाओ एक थोड़ा सा प्यारा सा छोटा सा केक लेके उसके पास और उनको विश कर दीजिए आज क्रिश शौर्य एंड हैप्पी वाला बर्थडे फ्रॉम शौर्य, परमेश्वर एंड पुरसुन एंड सिवलक फैमिली, जो कि सुचरण सिंह एंड गुलराज हरधुन फैमिली, सभी उन्हीं एक दो जनों को विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमारा नाम ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सभी को इच्छा होती है विश करने की और एहसास होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थडे। भी अगर आपका भी बर्थडे है और हमें मैसेज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा 5499-1294 पर। तब तक इंजॉय करिए हमारी पूरी टीम की तरफ से, ये आप सब के लिए जिनका भी आज बर्थडे है।

0: रेडियो मस्ती।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.
3: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबा।

0: सभी को नमस्कार और आदाब। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल को अंतिम चरण तक पहुंचाना। राष्ट्रसभा में कल पीएमक्यूटी के दौरान डोमेन लिपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां पाई गई हैं और स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। खिवियांजु हॉपा के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए जांच आयोग का गठन, इसकी घोषणा कल प्रांतीय प्रशासन मंत्री राजीव उचित ने की। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप के लिए कल राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना इजिप्ट के बीच अर्जेंटीना ने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच मैच रहा ड्रॉ 0-0। अंत में पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार विस्तार से। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ, लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: बजट लागू हो चुका है, लेकिन फाइनेंस बिल अभी तक नहीं। ये स्थिति भले ही सही नहीं लग रही है, लेकिन संविधान में इसके लिए दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था सरकार को सार्वजनिक खर्च करने की अनुमति देती है, जबकि दूसरी करों को लागू करने या उनमें बदलाव करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। 27 जून को राष्ट्रीय सभा ने अप्रोप्रिएशन बिल पारित किया। ये कानून सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालकर सार्वजनिक खर्चों का वित्त पोषण यानी उनकी फाइनेंसिंग करने की अनुमति देता है। इसी के आधार पर पहली जुलाई से नए वित्तीय वर्ष की औपचारिक शुरुआत हो सकी। दूसरी ओर नई कर संबंधी व्यवस्थाएं अलग प्रक्रिया के तहत लागू होती है। किसी भी नए कर, आयकर, VAT, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी या सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी में किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सभा की मंजूरी अनिवार्य होती है। यही फाइनेंस बिल का मुख्य उद्देश्य है, जो बजट में घोषित कर संबंधी उपायों को कानूनी आधार प्रदान करता है। जब तक ये विधेयक राष्ट्रीय सभा में पारित नहीं हो जाता, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता और गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक ये नई कर संबंधी व्यवस्थाएं लागू नहीं हो सकती। हालांकि बजट में की गई कुछ घोषणाएं पहले से ही प्रभावी हैं। इनमें प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। ये पहले से मौजूद कानूनों और नियमों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें फाइनेंस बिल के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना लागू किया जा सकता है।
0: प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राष्ट्रीय सभा में डोमेन लिपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में FCC की जाँच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े

0: या सवालों के भी जवाब दिए, उनके जवाब का एक अंश पेश है।
1: I'm further informed by the State Investment Corporation that following allegations made to the FCC.
0: State Investment Corporation ने जानकारी दी कि दो चीनी लोगों द्वारा FCC के तहत दर्ज शिकायत के चलते मिस्टर लेहाई का शेयर होल्डर के रूप में नेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड में भाग लेने को लेकर विरोध है। चीनी मूल के इन दो लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि मिस्टर लेहाई मनी लॉन्डरिंग में भागीदार हैं, जिसके बाद एफसीसी ने मिस्टर लेहाई के खिलाफ अस्थाई आरोप दर्ज किया है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर लेहाई के बैंक खातों और लेहाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की संपत्तियाँ फ्रीज करने का आदेश दिया। स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने मई 2026 में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में मिस्टर लेहाई के खिलाफ धोखाधड़ी और फंड्स के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन मिस्टर लीलांबा और मिस्टर लेहाई के खिलाफ शिकायतों पर जांच कर रही है। इन्हीं श्री लीलांबा को पूर्व सरकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। ये एक हाई प्रोफाइल केस है जो सार्वजनिक संपत्तियां, सरकारी जमीन, एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्थल, वित्त दुरुपयोग, शेयर होल्डर के रूप में लेहाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की बेईमानी और निवेश में नुकसान दर्शाता है।
1: मिसमैनेजमेंट, डिसऑनेस्टी बाय शेयर होल्डर लेहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड ए लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट।
0: कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी खामियों को का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए ये परियोजना इस वक्त पायलट चरण पर है। डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट को 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के आगे बढ़ने पर ऐसा किया गया है। उनको सुनते हैं।
2: But if the sum has been voted, it's because we have to recruit, and at the same time we are trying to expand. In the beginning, it was in its initial.
0: भर्ती कार्रवाई चलाई जाएगी और परियोजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी कारण ये रकम बढ़ाई गई है। शुरुआत में इतनी रकम की जरूरत नहीं थी और 19 मिलियन रुपए वापस कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए गए, लेकिन अब जब काम आगे बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ गया है। पूर्व सरकार द्वारा दो इलाकों में कोई भी कार्य नहीं किए गए। जहां फाइनेंस की बात आती है, ये मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि खर्चों पर ध्यान रखे। मैं आश्वासन देता हूं कि स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक एक रुपए का सही प्रयोग किया जाएगा। रिव्या जोहापा बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री हजीव रंजीव वुचित ने कल राष्ट्रीय सभा में की। इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये मामला 2003 में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जिसकी शुरुआती लागत 51 मिलियन रुपये से कुछ अधिक थी। बाद में यह मामला लंबे समय तक आर्बिट्रेशन विवाद में उलझा रहा और अंत में इसकी कुल लागत सरकार को 580 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। और तलब है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। आयका को भेजे गए एक गुमनाम पत्र के बाद पहले मध्यस्थ ने खुद को मामले से अलग किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन 2003 में प्राइवेट काउंसिल ने उस फैसले को बरकरार रखा। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रसभा के कार्य अब 10 जुलाई दोपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। और अब ये खबर, हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इस चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पॉन्ज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। अडॉप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFG और यूरोपीय संघ का सहयोग प्राप्त है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं अक्सर मौसम से जुड़े खतरों को लेकर देश में पाई जाने वाली कमजोरियां सामने लाती हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलकर स्पॉन्ज सिटीज की वैश्विक

0: अवधारणा को इस समस्या के एक समाधान के रूप में अपनाया जा सकता है। ये शहरी योजना का एक ऐसा मॉडल है जिसे बारिश के पानी को पाइप के जरिए तेजी से बहाने के बजाय उसे सोखने, जमा करने, फिल्टर करने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश कहते हैं,
1: ça veut dire nous fouiller quand nous trouvons un drain et après nous étudier un bassin de rétention, donc de l'eau qui est capable d'utiliser et réutiliser. Quand ça veut dire pour l'irrigation, quand ça veut dire pour consommation, quand ça veut dire pour plusieurs purposes.
0: 2025 में जारी किए गए लैंड ड्रेनेज प्लान की रणनीतियों में स्पॉन्ज सिटीज की धारणा शामिल है। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना और योजना को स्पष्ट रूप से समझाना जरूरी है। लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी के निदेशक,
2: Le master plan nous a apporté des solutions concrètes, un inventaire complet de nos infrastructures de drainage, une cartographie des zones vulnérables, de nouvelles règles nationales, des solutions durables et innovantes, comme les bassins de rétention, la restauration des zones humides, entre autres.
0: रोड्रिग्स में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम पहले से शुरू हो चुका है।
3: Un premier appui accompagne Rodrigue d'abord hein, dans l'élaboration d'un schéma de gestion des eaux de ruissellement fondé sur les principes de hydrologie régénérative et des solutions fondées sur la nature. Prévention des inondations, rétention de l'eau, alimentation des aquifères.
0: जल संसाधनों के बेहतर संचालन के वास्ते यूरोपीय संघ मॉरिशस को जरूरी समर्थन देने के लिए कटिबद्ध है।
4: L'Union européenne a adopté sa stratégie européenne pour la résilience de l'eau qui repose sur trois objectifs. Restaurer et protéger la résilience de l'eau, bâtir une économie de l'eau plus efficace et garantir un accès équitable à une eau propre pour tous.
0: सभी संबद्ध पक्षों को ड्रेनेज मैनेजमेंट मास्टर प्लान के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। इसके बाद उसके सुझावों और प्रस्तावों को लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी के अपडेटेड मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।
5: पोर्टलुई के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुरोन और रोड्रिग्स के अपोस्टोलिक विकार मोंसेयर मिशेल मोहा ने कल दोपहर बाद ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ मुलाकात की। चर्चाएं मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए एक रिटायरमेंट केंद्र और रोड्रिग्स में एक रिट्रीट सेंटर पर आधारित रही। मोंसेयर जॉन मिकाएल जुरोन और मोंसेयर मिशेल मोहा को सुनते हैं।
6: Aujourd'hui, c'était d'abord pour présenter le nouvel évêque de Rodrigue, hein, qui a été ordonné le 19 mars 2024. Et puis, passer un peu en revue des grandes questions, nous aussi, pas mal sur les personnes âgées. Si nous en avons dans le diocèse, tous les homes, les maisons de retraite, toutes les questions aussi de là, comment accompagner les personnes âgées.
7: Avec donc, l'Église, nous avons monté un projet pour ouvrir la première maison de retraite permanente pour Rodrigue. On a pour le moment, un centre de répit, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes âgées pour jusqu'à 2 mois, mais après, la personne doit rentrer à la maison. Il y a aussi une unité de répit qu'on prévoit de mettre en place pour les personnes autistes et les enfants et les jeunes lourdement handicapés.
5: वैश्विक स्तर पर सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल रात राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ, एक तगड़ा मैच जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की। उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनाल्टी में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। कल गुरुवार रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। और भारत में केरला में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता हैं। मिट्टी का बहाव इतना तेज रहा कि लोग इससे बच नहीं पाए और मिट्टी तले दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर आज सुबह 10 बजे तक ऊंची लहर और तेज़ हवाओं का की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी और तेज हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज

सुबह और दिन के दौरान भी पूर्वी इलाकों दक्षिणी इलाकों ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात को हवाई ढलानों पर ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। आम जनता से उड़ती हुई चीज़ों से सावधान रहने तथा ऊंचाइयों पर काम करते हुए सतर्कता बरतने और गाड़ी चालकों से क्रॉसविंड्स के कारण सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने की भी मांग की जा रही है। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में समंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा लगूनों में न जाने की सलाह भी दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 17, अधिकतम 18 से 21, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:46 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुँचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर कादिर का साथ रहा। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। मुसलमान टागोर इस कालिये में 86 साल के 86 years old के श्री बाल गोबिंद साम जो चिरूज मक्के के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे देवानंद साम के मकान मुसलमान टागोर इस कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। मस्को रोड प्लेंडी पापाई में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी अकीना रुसारा पैदाशी नाम संकर और जो छुट्टी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज सुबह दस बजे उनके बेटे नाजीम मुदाबकस के मकान मुस्कर रोड प्लेंडी पापाई से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंडी पापाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। शुमें डिस्पेंसरी नूवेल फ्रांस में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदेव धरकान जो रामदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी ज्ञानती धरकान के मकान शुमें डिस्पेंसरी नूवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहेशानी रोस्पेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ऋषि दयानंद स्ट्रीट जुभॉय में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसवंती रामचरण पैदाशी नाम भुवन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके मकान ऋषि दयानंद स्ट्रीट जुभॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बुडुलेन सेबास्टोपोल में 26 साल के 26 ईयर्स ओल्ड के जनाब करीम खान गुलजा जो गौसों इकबाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके पिता अब्दुल इकबाल खान के मकान बुदुलेन सेबास्टोपोल से

उठाकर दफना सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए सेबास्टोपोल की इनोर मस्जिद और फिर दफनाने के लिए सेबास्टोपोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉय रोड घोबियो न्यू ग्रोव में 79 साल के 79 years old के श्री लक्ष्मण रोसियावन जो सतीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे अंतिश रोसियावन के मकान रॉय रोड घोबियो न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 1:30 PM। रिजर्वा रोड ओलीहुद नंबर एक वाकवा में 81 साल के 81 years old के श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल गुरुवार को सुबह साढ़े नौ बजे उनके मकान रिजर्वा रोड ओलीहुद नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। रॉय रोड लुसियो सेबास्टोपोल में 57 साल के 57 years old के श्री गौतम गुली की मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी रागिनी गुली के मकान रॉय रोड लुसियो सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। नंबर 28 लाल बहादुर शास्त्री लेन जुभॉय में 90 years old की श्रीमती लीलावती भगवान दीन जो राधा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके मकान नंबर 28 लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट जुभॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉय रोड लावांचुआ में 83 साल के 83 years old के श्री वेद व्रत जीतन जो वेद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके बेटे वृतराज जीतन के मकान रारोड लावांचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। कांगारो सेंटर डे फ्लैक में 85 साल के 85 years old के श्री प्रेसराम रामसरन जो मिनिस्टर बलराम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके मकान कांगारो सेंटर डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:00। गार्डेनिया रोड विलबाग में 74 साल के 74 years old के श्री राजेंद्र देव बहू जो चुल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके मकान गार्डेनिया रोड विलबाग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितरों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। लॉट नंबर 18 मोसलमा ऑजी फ्लैक में 42 साल के 42 years old के श्री विकी गोबिन जो सिवालैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी माँ गोइंदामा गोबिन के मकान नंबर 18 मोसलमा ऑजी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बेचुलेन प्लैंडे रोश में 84 साल के 84 years old की श्रीमती सरस्वती बेचू
पैराशी नाम।

0: पत और जो सती के नाम से ज्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ ही आज शाम 4 बजे उनके पोते यशवीन बेचू के मकान बेचू लेन प्लेंडे हाउस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। जेरानियम लेन ला क्रोज़े शेबेल में बयासी साल के टिटू याजोल्डा की श्रीमती प्रमरावती जगू वेदाशी नाम जिंगुर और जो पुलू के नाम से ज्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे जाम जागू के मकान शेहानियम ले नाख्वाजे शिबैल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जो ख्वाबों भूखी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल 3 कोहोमान डेलमे। नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल 3 कोहोमान डेलमे 70 साल के 70 years old के श्री लक्ष्मी नारायण रामनारायण जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी अमृता रामनारायण के मकान नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल नंबर 3 कोहोमांडल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। थ्वा बुचिक थ्रियोले में 70 साल के 70 years old के श्री परमानंद बुद्धराम जो फुफुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनकी पत्नी चंद्रावती बुद्धराम के मकान थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौपमा महात्मा गांधी रोड थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। कांगुलबा रोड शुमेघोनी में 80 साल के 80 years old के श्री बाल्मिक बुदन जो ईश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे उनके मकान कांगुलबा रोड शुमेघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
3: Tak tak Bollywood.
4: Tak tak Bollywood.
5: Radio musti.
6: चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, मौसम ठंडा है, बारिश भी साथ है, तो स्वेटर और जैकेट पहनकर निकलिएगा, अम्ब्रेला साथ लीजिएगा, पानी और ब्रेकफास्ट साथ लेके जाइएगा। मेरे बाद जुड़ेंगी आपके साथ वेदिता, मैं थी आपके साथ पूनम, अब आप जुड़ेंगे मॉर्निंग बीट के साथ। इंजॉय कीजिएगा अपना दिन। बाय बाय।

0: टाइम चेक सुबह के 7 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
2: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 7:04 हुए हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: सर्दी के इस मौसम में कपकपाते होठों से हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं जी। गुड मॉर्निंग। ऐसे वाली मॉर्निंग सबकी निकल रही है जी। हाँ, वेडनेसडे 8th ऑफ जुलाई, वेलकम, स्वागत है आपका अभी के प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट। और इस सर्दी को हम ऐसे बीट कर करके मार मार के भगाएंगे। कैसे भगाएंगे भाई? गाने ऐसे चलाएंगे जिससे आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी करंट पैदा हो, थोड़ी गर्मी पैदा हो। और आपको पता है जब हम आते हैं तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो साथ देते रहिए, 9 बजे तक विदित आपके साथ रहेंगे आपके अपने मॉर्निंग बीट में ऑन रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: ओके गाइस, सो बाहर का मौसम सर्दी का मौसम और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मौसम अच्छी नहीं लग रही है, बात बात पे अच्छी कह देते हैं। तो आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें भाई, हमारी आवाज़ तो जाते जाते आ गई। हाँ बिल्कुल, आपका प्यार है जो खींच लाए। तो चलिए इसी के साथ एक गेम भी हो जाए आपके लिए, हम लेकर आए हैं गेम और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बस तैयार हो जाइए। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग भाग दौड़ करते हैं, तो एक गेम लेकर आए हैं आपके लिए और वो गेम होगा आपके लिए बस थोड़ी देर में, यानी कि इस गाने के बाद।
0: RM2
1: Radio Musty.
3: On est mercredi, c'est le milieu de la semaine et c'est jour de loto. Le jackpot du loto plus du tirage de ce soir est à environ 22 millions de roupies et celui du loto est estimé à 35 millions de roupies. 35 millions de roupies. Mais attention, il a plu la semaine dernière, mais ce n'est pas une raison pour gaspiller l'eau. Chaque litre compte, ne laissez pas l'eau couler inutilement quand vous faites la vaisselle. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
4: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance, jouer responsable. Simplement.
5: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekote Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
6: Et promotion, bidoune balle. Une courgette pour 29,95 €. 500 grammes carottes pour 19,95 €. 500 grammes mandarines pour 49,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €.
5: Pantrilla, Bazaar, Moudirou. Rendez-vous Gekote Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
7: On est tous winners.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई, हम तो किसी को लाल पीले नीले नहीं होने देंगे, बल्कि आपको कहेंगे कि हमारे गेम में पार्टिसिपेट कीजिए। आपके लिए लेकर आए हैं क्या? वेल, आपको खेलना पड़ेगा MBC के साथ एंड आप जीत पाएंगे एक टिकट टू द गोल्डन 90s era 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। इनका लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे 25 जुलाई 7:30 PM एट SBICC पाई। सो वी गोना स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा। भाई, टाइमलेस मेलोडीज होंगे, लेजेंडरी हिट्स होंगे और प्यू मैजिक।

जो म्यूजिकल मैजिक है आप इसको जी पाएंगे इनके साथ. Well, tickets start as from 850 rupees and are available at mutchike.mu and Rezo. Tayo. इस कॉन्सर्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको मिस मत कीजिए. रिजर्वेशन के लिए यू कैन कॉल द हॉटलाइन 466-9999. जीतने वाले को अपने आईडी कार्ड के साथ आकर अपना टिकट कलेक्ट करेगा एट एमबीसी सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच. अब आज का हमारा सवाल आपके लिए, आप मुझे ये बताइए 1998 में फिल्म फेयर की तरफ से, जी हाँ फिल्म फेयर की तरफ से किस गाने के लिए अभिजीत जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट मेल सिंगर. आपको मुझे बताना है 1998 में अभिजीत जी को किस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था. आपको जवाब देना है 5491294.

0: मॉर्निंग बीट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भैया, आपके लिए एक सवाल हम लेकर आए थे. हमने आपसे पूछा था कि 1998 में फिल्मफेयर की तरफ से अभिजीत जी को एक अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि बेस्ट सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया था. आपको मुझे बताना था कि वो कौन सा गाना है. आपने फिल्म भी बता दिया, आपने गाना भी बता दिया. द मूवी इज यस बॉस, एंड जो गाना है वो है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं. वैसे ये फिल्म रिलीज हुई थी 18th जुलाई 1997 में, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी एट द बॉक्स ऑफिस. इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, एंड इस फिल्म को 6 नॉमिनेशंस मिले थे बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बेस्ट विलेन के लिए. एंड अभिजीत ने जीता था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर For the song, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं. चले तो इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं.

एंड यस यहां पर लकी ड्रॉ के बाद नाम आता है बनाके की श्वेता हुकुम का Congratulations, आपने खेला एमबीसी के साथ आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट जो होने वाला है सैटरडे 25th ऑफ जुलाई शाम 7:30 बजे

hotline.mu and Rezo Tayo par. Agar aap reservation karna chahte hain to call the hotline 466-9999 par. To chaliye isi ke saath ab gaane ki baat chali hai to wo gaana hum kaise na sune. All those beautiful people abhi is samay jo drive kar rahe hain, enjoy kijiye hamara ek khoobsurat sa gaana. I know. बहुत सारी यादें याद आ जाएंगी आपको. ये गाना आपने भी तो किसी के लिए गाया होगा. So very good morning and welcome, Morning Beat विदिता के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर.

0: ऑलराइट, तो हम उनसे बात करेंगे, पूछते हैं इनसे, पता नहीं शायद ये बना पाए या नहीं. हेलो
1: हेलो,
0: यस मिस्टर अनुज देवी सिंह.
1: यस
0: जी, आपके लिए वो पूछ रहे थे कि क्या आप हेल्प कर सकते हैं फ्लाइंग कार्स बनाने के लिए. आप इंजीनियर हो ना?
1: हमारी एक टीम
0: ना इंडिया से आई है. हम लोग यहाँ पर मिलकर ना फ्लाइंग कार्स बनाना चाहते थे. तो हम सारे जो इंजीनियर्स हैं उनको कॉल कर रहे हैं, उनको पूछने के लिए कि क्या हम सब मिलकर बैठकर फ्लाइंग कार्स बना सकते हैं. बिकॉज़ यू नो, जब आप इधर मोका की ओर, रिजवी की ओर आते हो ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है. सो वी जस्ट ट्राइंग, लाइक हम कुछ अगर कर सके तो. आपको लगता है कि हम बना सकते हैं?
1: Well, I'm on the radio at the moment.
0: Oh my God, no! Kissy! Kissy!

0: थे बिना ट्रैफिक के पहुंच जाते ना, अभी मैं उसमें बिठाकर आपको एमबीसी ले आती अपना वाउचर लेने के लिए. सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अनुज. एंड चलो भाई, आपने जब पहचान ही लिया तो फ्लाइंग कार्स नहीं, लेकिन अपने गाड़ी में बैठ के यू कैन कम टू एमबीसी विद योर आईडी. एंड आपके लिए लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से वी हैव अ वाउचर व्हिच यू हैव टू कम टू एमबीसी एंड कलेक्ट. ओके, यू हैव टुडे नहीं तो कल. ओके, दो दिन है आपके पास, आप आकर अपना जो वाउचर है यहाँ पर आकर ले जा सकते हैं. सो वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आई जस्ट होप कि आपका जो बर्थडे है बहुत खास, बहुत स्पेशल हो. एंड कुछ कहना है आपको? एक्चुअली गीशना ने ये सरप्राइज किया है आपके लिए.
1: ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस. Thank you very much.
0: All right. So, happy birthday once again. And thank you.
1: Thank you.
0: Thank you. Have a good day. Bye-bye. चलो भाई, आप भी अगर किसी को सरप्राइज करना चाहते तो क्यों नहीं. लेकिन अभी मुझे सरप्राइज करने के लिए अरविंद निकल चुके हैं. तो अरविंद से मुलाकात करते हैं इस गाने के बाद एंड जानते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है.

0: Sports Magazine is brought.
1: Sports News.
2: Radio Musty in the mix.
3: ऑल राइट गाइस, तो अरविंद आ चुके हैं हमारे साथ लेकर. अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल्स के बारे में बातें हो रही थी, तो चलिए उनसे कुछ और जानकारी हम लेते हैं. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल के फिक्स्चर्स तैयार हैं. अंतिम क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा. अर्जेंटीना के लिए 3-2 की कॉमबैक विन, तो पेनाल्टी पर स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को एलिमिनेट किया. इस पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे. फिलहाल अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी से पंगा नहीं लेने का. डोंट मेस विद मेसी. वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 की लीड, 2 गोलों की बढ़त लेकर इजिप्ट वाले बहुत फरफरा रहे थे. पर कहते ना, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को मेसी सिकंदर कहते हैं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी. फर्स्ट हाफ में इजिप्ट का पहला गोल बनाता है यासिर इब्राहिम. इसके बाद मेसी पेनाल्टी मिस कर जाता है. सेकंड हाफ में इजिप्ट 2-0 से आगे. मुस्ताफो जीको का गोल, इससे पहले इसी ने एक गोल बनाया था पर रेफरी ने रद्द किया. फिर शुरू होता है मेसी का जलवा. उस

0: के पास पर रोमेरो का गोल। चार मिनट बाद मेसी ऑन टारगेट, इस वर्ल्ड कप में उसका आठवां गोल और एडेड टाइम में एंजो फर्नांडेज अपनी टीम को जीत दिलाता है लोतारो मार्टिनेज के क्रॉस पर। अर्जेंटीना 3 इजिप्ट 2, नेमार और रोनाल्डो हारकर रो रहे थे, मेसी जीत कर रो रहा था खुशी के आंसू। देखा जाए तो मेसी रो रहा था क्योंकि उसे पता था कि अर्जेंटीना बहुत दूर से बचा है। हार से केवल 12 मिनट दूर थी अर्जेंटीना की टीम, इजिप्ट ने अर्जेंटीना को डराया जरूर। अर्जेंटीना की इस जीत में उसके कोच का भी बहुत बड़ा हाथ है, एंड मौके पर सही सब्स्टिट्यूशन करने पर मैच का रुख एकदम पलट गया। इजिप्ट की टीम जी जान से खेली, पहली बार वर्ल्ड कप के इस स्तर पर आई। मोहम्मद साला के साथ ही पछतावा है, छिलल खांसी भाग गल पर सर ऊंचा करके जा रहे हैं। मैच के बाद इजिप्ट के कोच ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि इजिप्ट पर नाइंसाफी हुई है, अर्जेंटीना के तीसरे गोल से पहले साला पर फाउल हुआ था। बॉस हसन ने यहां तक कहा कि फीफा अर्जेंटीना और मेसी को फेवर करता है। जो भी हो, अब पछताए होत गया जब मेसी चूक गया खेत। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के सामने होगा स्विट्जरलैंड। कोलंबिया के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच 0-0 रहा, मैच ड्रो 0-0। पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड का हीरो बना ग्रेगो कोबेल, जिसने कोलंबिया के कुचो एर्नांडेज के पेनाल्टी को बेहतरीन तरीके से रोका, स्टनिंग सेव। स्विट्जरलैंड की टीम 72 साल बाद वर्ल्ड कप के टॉप 8 में आई। क्वार्टर फाइनल फिक्स्चर्स इस प्रकार है, कल रात्रि के 12 बजे फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर शुक्रवार 11 बजे फ्राइडे 11 PM स्पेन वर्सेस बेल्जियम, संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, फिर सोमवार को मंडे सुबह 5 बजे अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड। बची हैं केवल 8 टीमें जो हर प्रकार से विश्व चैंपियन बनने के लिए काबिल हैं। आज आराम का दिन, अभी तक मतलब 27 दिनों में 5 मैच खेलकर 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में हैं। जो आने वाले 3 मैच जीतेगा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। टेनिस, विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच की जवानी वापस आ गई है। 39 साल का जोकोविच 25 साल के नौजवान को 5 सेट पर हराता है, 5 घंटे 15 मिनट का खेल। नोवाक जोकोविच ने ओगा अल्यासिमे को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया, 5 सेट थ्रिलर रहा। यानिक सिना भी क्वालिफाई हुआ स्ट्रफ को 7-5, 7-5, 6-3 से हराकर। लड़कियों में कोको गोफ पिगुला को हरा पाई, मुचोवा क्वालिफाई हुई ओसाका को हराकर। आज के क्वार्टर फाइनल कोइस्ट्रिक पाउलिनी नुस्कोवा मेरतेंस, लड़कों में कोबोली फेरी फ्रिट्स वेरेव। सेमीफाइनल में कोको गोफ खेलेगी मुचोवा के खिलाफ और यानिक सिना लोहा लेगा नोवाक जोकोविच से, ये फ्राइडे मैच है। क्रिकेट, तीसरे T20 मैच में भारतीय T20 टीम की धुलाई हुई, इंग्लैंड ने टीम इंडिया को रिकॉर्ड 125 रनों से हराया। इंग्लैंड की टीम के 201 रनों के जवाब में भारतीय टीम केवल 76 रन पर ऑल आउट हुई। वैभव सूर्यवंशी केवल 13 रन बना पाया, पर उससे ज्यादा कोई और नहीं बना पाया टीम इंडिया में। T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड हार, 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे है, 2 मैच बचे हैं। और साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के चौथे चरण फोर्थ स्टेज में डेनमार्क के मैट्स पेडर्सन की जीत हुई। ओवरऑल लीड में डिफेंडिंग चैंपियन तादेज पोगाचा अपना येलो जर्सी खो बैठा, टोस्टन ट्राइन नया लीडर है, पोगाचा चौथे स्थान पर 7:50 पीछे। So, खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। जबरदस्त वापसी अर्जेंटीना की ओर से, 2-0 से हार रही थी मेसी की टीम, लेकिन झपट्टा मार के 3-2 से मैच जीत पाए। और उधर स्विट्जरलैंड पेनाल्टी पर कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। ये नहीं, हमारी मुलाकात फिर से हो रही है 8:30 बजे with the special World Cup magazine. Till then, enjoy the music on RM2.
1: Thank you so much, Arvind. Yes, don't mess with Messi. वैसे अरविंद, आप हमें बता रहे थे, सुना रहे थे ना कि सबका चैन छीना, ये है

0: 195 roupies.
1: Crunchy Deals KFC, petit prix, maxi taste. KFC.
2: RM2. Radio Musti.
3: घड़ी मिलाती चलिए इस समय सुबह के 8 बजे.
4: RM2 Radio Musti.
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: Radio Musti.
7: North, South,
4: 103.5.
7: East, West,
4: 96.4.
7: Center,
4: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
8: सबको एक नमस्ते. संक्षिप्त समाचार सुना जा. आज बुध 8 जुलाई के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट के पहला बैठक के अध्यक्षता करियन. इस समिति के जिम्मेदारी हुई फाइनेंस बिल 2026 के अंतिम चरण लेक पहुंचाए के. ये विधेयक अभिलेख पारित नहीं होल बाटे बखेर कई गो कदम पहला जुलाई से ही अमल में आनल गल है. ये जानल की गल बरिस खातिर फाइनेंस एक्ट के 8 अगस्त 2025 के राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलल रहल आ ओकर एक दिन बाद ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हो रहल यानी 5 जून 2025 के बजट पेश करला के बाद के 2 महीना बाद. प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राष्ट्रसभा में डुमिनली पाई के स्मार्ट सिटी परियोजना के मुद्दा उठावल गल. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलन की ई परियोजना में कई गो कमी बाटे. वो बतैलन की स्मार्ट सिटी के दर्जा वापस ले परी विचार करल जात बाटे जबकि ई मामला में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जाँच वो जारी बाटे. प्रधानमंत्री ई विषय से जुड़ल दूसर दूसर सवाल के जवाब वो देलन जा. कालवे राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ई हेल्थ परियोजना पर जानकारी दिलन जा. वो बोलन कि इस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में शामिल बाटे. वो आगे बोलन कि तकनीकी कमी बाटे ओकर पता लगाए खातिर आ रही सुधारे खातिर ई परियोजना ई बखत पायलट परियोजना है. डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट के 25 मिलियन रुपया से 45 मिलियन रुपया लेक बढ़ाई के सवाल परी स्वास्थ्य मंत्री बतैलन जा कि ई परियोजना के आगे बढ़ाई परी ऐसन करल जात बा काहे कि एकर चलत देश भर में भर्ती कार्रवाई चलावल जाए आरे संगे संगे बाकी बचल जुन काम बाटे ओकरा पूरा करल जाए के चाही. जब मोटका पानी बरसेला त देश के कई गो इलाका में पानी जमा होए के समस्या आगे आवेला. ई चुनौती से निपटे खातिर लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी काल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी पर एगो कार्यशाला आयोजित करलन जा. अडाप्ट एक्शन परियोजना के तहत ई पहल के AFDR यूरोपीय संघ के सहयोग मिली. ई परियोजना के लागू करे खातिर लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी नवा भर्ती करे के सोचत बाटे. वैश्विक स्तर पर विश्व कप 2026 खातिर काल रात राउंड ऑफ 16 खातिर अंतिम मैच खेलल गल. अर्जेंटीना के सामना भेल इजिप्ट संगे. एगो तगड़ा मैच जुन में जीत भेल अर्जेंटीना के. वो इजिप्ट के 3-2 से हरैलक जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच के मैच आखिर लेक ड्रॉ रहल 0-0. अंत में पेनाल्टी में स्विट्जरलैंड के जीत भेल. काल बिफे के रात के 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स के पहला मैच खेलल जाए फ्रांस आरी मोरक्को के बीच. तय रहल संक्षिप्त समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद. हमने की आज्ञा दिया. नमस्ते.
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
9: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: दूर जाने की क्या जरूरत है, चलो रोड्रिक्स से घूम के आते हैं। मॉरिशस घूमे आप?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो कोई नहीं, एमबीसी आ जाना घूमने। सुबह के 8:10 हो रहे हैं अब। बस भाई आप लोगों का साथ है और हमें क्या चाहिए। विनीता आपका साथ देने आई है आपके अपने मॉर्निंग बीट में रेडियो मस्ती हमारा प्रोग्राम। भूलिएगा नहीं कि हमारे इस आवर में भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं भाई? अपना प्यार लेकर आए हैं और क्या लेकर आए हैं, गेम भी है और जानना नहीं चाहेंगे कि आज मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो चलिए ना साथ में मिलते हैं, सुनते हैं याचना क्या कह रही है।
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.

0: मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे तक तेज हवाएं और ऊंची लहर की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है, जिस वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान दक्षिणी तथा पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। रात को भी बादल घिरे रहेंगे, खासकर ऊंचाइयों पर और हवाई ढलानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों से उड़ती चीज़ों से बचने तथा ऊंचाइयों पर काम करते समय सावधानी बरतने और खासकर सड़कों पर क्रॉस विंड्स के कारण ज्यादा सतर्क रहने की मांग की जाती है। और समुद्र में की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार भाटे के समय दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों, आम जनता और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों के साथ आज दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है और तटीय इलाकों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 17 और अधिकतम 18 से 21, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:46 पर, जबकि शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
3: Béala, Wednesday Bazaar, la gécote winners! Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans tout ban winners!
4: Et promotion, bidoun bal! Une courgette pour 29,95 €! 500 grammes carottes pour 19,95 €! 500 grammes mandarines pour 49,95 €! 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €!
3: Ban Prila, Bazaar Moudirou! Rendez-vous cote winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar!
5: On est tous winners!

0: avant tes défis, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: जो चला गया उसका गम मत करो, क्योंकि जिंदगी हमेशा नए मौके लेकर आते हैं। जो तुम्हारे लिए था वो कभी तुमसे दूर नहीं जाता, और जो चला गया शायद वो सिर्फ तुम्हें कुछ बेहतर तक पहुंचाने का रास्ता था। दोस्तों, कभी कभी हम किसी इंसान, रिश्ते या मौके के चले जाने का दुख इतना करते हैं कि जो नई खुशियां हमारे सामने खड़ी होती हैं उसे हम देख ही नहीं पाते। हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग का सिग्नल होती है। गुजरी हुई बातों से सीखो, लेकिन अपनी जिंदगी को उनके साथ रुकने मत दो। पास्ट को याद रखना ठीक है, लेकिन फ्यूचर को उसके लिए कुर्बान मत करो। जो आगे हैं वो अक्सर उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है जो पीछे रह गया।
0: Avant tout défi, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé. Avant tout défi, de longs shifts, de premier pas qui capable sans tout audi, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il peint sa tasse, puis un nouveau départ, un nouveau énergie, une nouvelle vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé.

0: टाइम पे उठ जाते थे, आजकल बच्चे जो हैं वो तो 4G 5G इन सब के साथ चलते हैं। हमारे यहाँ तो माताजी, पिताजी, चाचा जी, दादाजी, दादी जी सब होते थे, हमारी लाइफ तो अलग होती थी। आजकल के बच्चों को पता नहीं। कोई बात नहीं जी, अभी एजी ओजी भी हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं हम वेट करते हैं। अरविंद अभी थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप मैगजीन। फिलहाल अभी के लिए अगला गाना हो जाए, और भूलिएगा नहीं कि उसके बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गेम। और किसको जाना है कॉन्सर्ट, जाना है कॉन्सर्ट, चलो कोई नहीं जी, हम ढूंढ लेंगे आपके लिए। अभी देखते हैं कि आज किसकी किस्मत चमकती है। फिलहाल अरविंद जी का हम वेट कर रहे हैं, इसके चलते तब तक गाना हो जाए।
1: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

चलो भाई अगर यहाँ पर हम अपने गेम के बारे में बात करें, अभी अरविंद जी रेडी हो रहे हैं, उनके पास कुछ और न्यूज़ है हम तक पहुँचाने के लिए। तो जैसा मैंने कहा था कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। इनके गाने आपने सुने, इनके गाने तो सुन सुन के हम बड़े हुए, जवान हुए हैं भाई। तो इनका लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे 25 ऑफ जुलाई और ये होगा 7:30 PM शाम को और एट SBICC पाई। तो अगर आप लोग इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए करना क्या है, बस आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जी हाँ, और बस आपको मुझे ये बताना है कि एक गाना है जो कि सैफ अली खान पे पिक्चराइज्ड है। जी हाँ, एक गाना है जो सैफ अली खान पे पिक्चराइज्ड है और ये गाना जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसमें शिल्पा शेट्टी भी हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी और सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना, मेरा मन कर रहा है कि मैं बोलूं लेकिन मुझे पता है कि आपको पता चल गया है। देखो फ़ोन भी बजने लगा, देखो यहाँ पे जवाब भी आने लगे, मैसेजेस भी आने लगे। एक बहुत ही फेमस गाना है, आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा गाना है जो कि इन दोनों पे पिक्चराइज्ड हुआ है। जी हाँ, जिसमें प्यार भी है और फिल्म के टाइटल में प्यार

चार है और ये गांव की छोड़ी होती है, वो रईस दादा होता है। एक गाना भी है उस फिल्म में, दूसरा वाला गाना है जो कहता है कि चांद से पर्दा कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि एक गाना है जो उन पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, अकेले उन पे गाना फेमस हुआ था, तो बताइए कि वो कौन सा गाना है। मुझे जवाब पहले से मिल गया है, बहुत सारे लोगों ने भेज दिया है, अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। 5991 2 9 क्या यार, मैंने बस इतना ही नाम लिया, शिल्पा शेट्टी और सैफ अली खान, और आपने जवाब देना अभी भी शुरू कर दिया, क्या बात है भाई, दाद देनी पड़ेगी।

0: भाई फोटो तो आप मेरी घींच के पुलिस स्टेशन में लगा दोगे, मैंने सवारी गलत कर दिया भाई। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो गाना है वो मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं सोच कुछ और रही थी, मैं कुछ और कर रही थी। चलो भाई, आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। चलो अभी सवाल जो है हमने पूछ लिया, जवाब तो मेरे पास ही है, आपको समझ में आ गया, लेकिन जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें दिल लगी है और उसमें काजोल है और उसमें अक्षय है, और आई एम रियली सॉरी, आपको पता है जवाब, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी समय हो गया है कि हम मिले अरविंद से, क्योंकि वो लेकर आ रहे हैं हमारे लिए।
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: रेडियो मस्ती के साथ
2: वर्ल्ड कप मैगजीन।
0: जी हाँ, वर्ल्ड कप मैगजीन अरविंद के साथ, और जैसा आपको पता है अर्जेंटीना की आज जीत हुई है, तो एक बार फिर से वो लम्हा हम जीना चाहेंगे।
4: लंच टाइम इन अटलांटा, अ प्लेस इन द लास्ट एट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एट स्टेक, एंड इट्स द डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना। Break the deadlock here against the defending champions from Argentina. It's a decent ball in, and they have broken the deadlock. Wow, what a start to the match. It's a consecutive match.

0: at the World Cup finals. No, he can't. Not yet, anyway. He's denied by Mustafa Shabir. Let's take... Away we go. As it stands, Argentina 45 minutes away from being knocked out of the FIFA World Cup. Alvarez. Alarm bells ringing for Argentina. 2-0. This time it's going to stand. Messi looking to start to turn it in their favour, and they are back in the game. Argentina right back in it. Cristian Romero. It's game on now. And still, it's brilliant, and it was nearly 2-2. Plenty of blue and white shirts inside the penalty area now. Block made by Lachine the first time. Lautaro sends it across. It's swept in.
1: This is relentless. The delivery in the box is fortunate, but the reflection and keep it alive. And Messi.
0: Lautaro Martinez. Red shirts racing back as fast as they can.
1: Argentina took control. He felt
0: retaining the trophy still alive, but looked very much in doubt with 11 minutes to go. But it's still on for Argentina. It's been epic in Atlanta. A game that had everything. A game that pushed the defending champions to the limit.
2: Argentina aur Lionel Messi se panga nahi lene ka. Don't mess with Messi. World champion Argentina ke khilaaf 2-0 ki lead, दो गोलों की बढ़त लेकर इजिप्ट वाले बहुत फरफरा रहे थे, पर कहते ना, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को मेसी सिकंदर कहते हैं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फर्स्ट हाफ में इजिप्ट का पहला गोल बनाता है यासिर इब्राहिम, इसके बाद मेसी पेनाल्टी मिस कर जाता है। सेकंड हाफ में इजिप्ट 2-0 से आगे, मुस्ताफो जीको का गोल, इसे पहले इसी ने एक गोल बनाया था पर रेफरी ने रद्द किया। फिर शुरू होता है मेसी का जलवा, उसके पास पर रोमेरो का गोल। 4 मिनट बाद मेसी ऑन टारगेट, इस वर्ल्ड कप में उसका 8वां गोल, और एडेड टाइम में एंजो फर्नांडेज अपनी टीम को जीत दिलाता है लोतारो मार्टिनेज के क्रॉस पर। अर्जेंटीना 3 इजिप्ट 2। नेमार और रोनाल्डो हारकर रो रहे थे, मेसी जीत कर रो रहा था खुशी के आंसू। देखा जाए तो मेसी रो रहा था क्योंकि उसे पता था कि अर्जेंटीना बहुत दूर से बचा है। हार से केवल 12 मिनट दूर थी अर्जेंटीना की टीम। इजिप्ट ने अर्जेंटीना को डराया जरूर। अर्जेंटीना की इस जीत में उसके कोच का भी बहुत बड़ा हाथ है। एंड मौके पर सही सब्स्टिट्यूशन करने पर मैच का रुख एकदम पलट गया। इजिप्ट की टीम जी जान से खेली, पहली बार वर्ल्ड कप के इस स्तर पर आई। मोहम्मद साला के साथ ही पछतावा है, छिलल खांसी भाग गल, पर सर ऊंचा करके जा रहे हैं। मैच के बाद इजिप्ट के कोच ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि इजिप्ट पर नाइंसाफी हुई है। अर्जेंटीना के तीसरे गोल से पहले साला पर फाउल हुआ था। बॉस हसन ने यहां तक कहा कि फीफा अर्जेंटीना और मेसी को फेवर करता है। जो भी हो, अब पछताए होत गया जब मेसी चूक गया खेत। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के सामने होगा स्विट्जरलैंड। कोलंबिया के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच 0-0 रहा। मैच ड्रो 0-0। पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड का हीरो बना ग्रेगो कोबेल, जिसने कोलंबिया के कुचो एर्नांडेज के पेनाल्टी को बेहतरीन तरीके से रोका। स्टनिंग सेव। स्विट्जरलैंड की टीम 72 साल बाद वर्ल्ड कप के टॉप 8 में आई। क्वार्टर फाइनल फिक्स्चर्स इस प्रकार है। कल रात्रि के 12 बजे फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर शुक्रवार 11 बजे फ्राइडे 11 PM स्पेन वर्सेस बेल्जियम, संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, फिर सोमवार को मंडे सुबह 5 बजे अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड। बची हैं केवल 8 टीमें जो हर प्रकार से विश्व चैंपियन बनने के लिए काबिल हैं। आज आराम का दिन, अभी तक मतलब 27 दिनों में 5 मैच खेलकर 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में हैं। जो आने वाले 3 मैच जीतेगा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा।
3: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates

0: And yes, you're listening to
1: a good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: सवाल तो हमने किया था, हमने तो पूछा था कि एक फिल्म जिसमें प्यार भी है उसके टाइटल में और जिसमें सैफ अली खान है, जिसमें शिल्पा शेट्टी है, तो आपको मुझे फिल्म का नाम बताना था, आपने मुझे बता दिया और फिल्म का नाम है आओ प्यार करें, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जो गाना ढूंढ रही थी वो मुझे दिल लगी फिल्म में मिली एंड थैंक यू सो मच, उसमें भी सैफ है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है एंड लकी ड्रॉ के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नाम आया है किसका। नाम आया है यहाँ पर नालिनी नतू फ्रॉम त्यागोज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट, जो सैटरडे 25th ऑफ जुलाई को हो रहा है और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको मौका मिल रहा है इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने का, अपने बीते दिनों को याद करने का, अब 90s के जितने भी रोमांटिक गाने हैं आपको पता ही है कि सारे गाने आपको यहीं पे सुनने को मिलेगा। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो टिकट स्टार्ट्स एट 850 रुपीज एंड ये mochiket.mu और rizotayu पर भी अवेलेबल है। तो इस अनफॉर्गेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस को मिस मत कीजिए। रिजर्वेशन के लिए हॉटलाइन कॉल करें 466-9999 पर। तो चलिए, इसी के साथ जब इतने सारे गाने की हम बात कर चुके हैं तो कुछ गाने ऐसे भी हैं जो शायद आप सुनना चाहेंगे और हो सकता है कि उन यादों को आप फिर से जीना चाहेंगे। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं डेफिनेटली 9 बजे के समाचारों की ओर और फिर उसके बाद आपका साथ देने के लिए यहाँ पर बाकी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। मैं

आपको कहूंगी बाय बाय टाटा एंड मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में. भूलिएगा नहीं, हम आ रहे हैं आपसे मिलने एंड मॉर्निंग में जो गाने होंगे धमाकेदार होंगे, लेकिन अभी जो मौसम के हिसाब से जो गाने आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं. तो हम चलें, अब अभिजीत जाने देंगे तो चलेंगे, रोक लिया तो रोक लिया. By the way, happy birthday to those जो अपना birthday celebrate कर रहे हैं. देव, thank you so much, आपका message मिला हमें. आप पेरिस से हमें याद करें, कहते हैं बहुत गर्मी है 35 degrees, लेकिन यहाँ पर तो सर्दी सर्दी है जो कि कर रहे हैं enjoy. Next, आपकी wife के नाम. वहीं पे दीपक के लिए गाना होगा, पापा दीपक आपकी बेटी दिया की तरफ से बहुत सारा प्यार. खुशबू की तरफ से चंदन, सोनाली, शनाया और शानवी के नाम. आ गए विकास लेकर आपके लिए मॉर्निंग मस्ती.

0: 9 बज गए हैं, चलते हैं सीधा समाचारों की ओर।
1: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है याशना, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते याशना।
2: नमस्ते रत्ना, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। आप सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले ही ये विधेयक

0: अभी तक पारित नहीं हुआ, लेकिन कई कदम पहली जुलाई से अमल में लाए जा चुके हैं। ये जान लें कि पिछले वित्तीय साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और उसके एक दिन बाद ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हुआ था, यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राज्यसभा में दुमेन लिपाई की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जाँच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने इस परियोजना के लिए यहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा संचालित इस परियोजना के लिए 573 मिलियन रुपए लागत की 97 एकड़ जमीन और उस पर बनी इमारतें प्रदान की थी, लेकिन वित्तीय प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं हुआ। मात्र 4 विलास और 1 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया गया और वो भी बहुत देरी के साथ। रिविया जुहापा के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री रंजीव उचित ने कल राष्ट्रसभा में की। इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये मामला 2003 में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जिसकी शुरुआती लागत 51 मिलियन रुपये से कुछ अधिक थी। बाद में ये मामला लंबे समय तक आर्बिट्रेशन विवाद में फंसा रहा और अंत में इसकी कुल लागत सरकार को 580 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। गौरतलब है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। अडाप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग प्राप्त होगा। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल रात राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ एक तगड़ा मैच, जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की। उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनल्टी में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। कल गुरुवार रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। और विदेशी समाचारों में, केरला में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिट्टी का बहाव इतना तेज रहा कि लोग वहां से बच नहीं पाए और मिट्टी तले दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी रखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: तेरा हो जाऊं। वैसे ये जाऊं क्यों है? हाँ, लेकिन एक है जो चली गई और वो है वेदिता।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: इतनी खुशी, अरे खुश हो गए कि मेसी की टीम ने दूसरे की ऐसी तैसी कर दी। स्वागत 9:07। देखिए कमाल की बात यह है कि महीना है 7 और तारीख होगी 8। और जी मैं कह रहा हूँ 9 बज चुके हैं। लवली है ना, ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा थोड़ा खेला करो। जिंदगी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, बस जरूरी है कि आप उसको ऐसा ही बनाएं, हर दिन हैप्पी हो जाए, यानी कि मॉर्निंग मॉर्निंग में एक पॉजिटिव, एक बहुत ही कमाल की दमदार शुरुआत। आपसे मुलाकात, तो रेडी रेडी फॉर एक्शन। इस घंटे के अंदर बात करते हैं बी टाउन की, बात करते हैं आपकी हमारी किचन हैक्स, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, साथ में लाइफस्टाइल के मंत्रा कि जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानी, वो आपको ना पहुंचाएं बिल्कुल भी हानि। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद द मैजिक ऑफ द म्यूजिक।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: दुम। अरे कहाँ हो गए गुम, क्योंकि अभी शुरू होने वाले हम
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: जैसा वे एक नजर आपके सितारों की चाल पर शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: गुड मॉर्निंग एरीज, आज का दिन फुल ऑन एक्शन मोड में शुरू हो रहा है। जो काम काफी टाइम से पेंडिंग था उसमें आज प्रोग्रेस देखने वाली है। किसी बात से एक नया आइडिया मिल सकता है, उसे इग्नोर मत करना। हाँ, लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा फन और मस्ती का तड़का चलता रहेगा। आज का मंत्र, कॉन्फिडेंस के साथ काइंडनेस भी जरूरी है।
2: टॉरस
0: राशि, आज कंफर्ट जोन से एक छोटा सा स्टेप बाहर निकालकर आपको फायदा ही होगा। पैसे से जुड़ी स्मार्ट प्लानिंग फ्यूचर में काम आएगी। फैमिली या दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम मूड को फ्रेश करेगा। किसी का वैल्यूएबल एडवाइस आज आपके काम आ सकता है। आज का मंत्र, स्लो एंड स्टेडी विंस द डे।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: जेमिनी आज आपकी बातों का मैजिक सबको इंप्रेस करेगा। एक अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज फेस पर स्माइल ले आ सकती है। हर चीज में इंटरेस्ट लेना अच्छा है, बस फोकस मत खोना। नेटवर्किंग और नए कनेक्शंस के लिए परफेक्ट दिन है। आज का मंत्र, स्पीक स्मार्ट शाइन ब्राइटर।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: गुड मॉर्निंग कैंसर, आज अपने दिल की आवाज को सुनना ना भूलें। घर या फैमिली के साथ वक्त बिताना सुकून देगा। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आप अपनी केयर करना ना भूल जाएं। एक इमोशनल मोमेंट किसी रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और आज का मंत्र आपके लिए, केयर देने के साथ साथ खुद को भी केयर दो।
2: लियो सिंह राशि,
0: लियो जो भी काम मिले इसका कर दियो। वैसे तो आज स्पॉटलाइट नेचुरली आपकी तरफ रहने वाली है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का परफेक्ट चांस मिल सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी सी पेशेंस वाली कहानी भी ऑन रखिए। हाँ, लव और एंटरटेनमेंट दोनों का स्ट्रॉन्ग वाइब बना हुआ है। आज का मंत्र आपके लिए, शाइन ब्राइट बट स्टे हम्बल।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: हे वर्गो, आज आपकी प्लानिंग और परफेक्शन सबको इंप्रेस कर देगी। एक छोटी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन आप ही निकालेंगे, बस लगे रहो। हर बात को ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। वर्क और रेस्ट के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आज का मंत्र, परफेक्शन से पहले पीस।
2: लिब्रा तुला राशि,
0: गुड मॉर्निंग लिब्रा, आज आप हार्मनी और पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। क्रिएटिव आइडियाज को इग्नोर मत कीजिए, वो कमाल कर सकते हैं। उसमें कुछ वैल्यू डालिए, उसके बारे में सोचिए। डिसीजंस लेने में ज्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि सही टाइम पर सही नतीजा तभी मिलता है जब काम करता है चाचा या भतीजा। आज का मंत्र, स्माइल के साथ हर चैलेंज इजी लगता है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: हे स्कॉर्पियो, आज डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, वो सही डायरेक्शन दिखाएगी। कोई पुरानी कंफ्यूजन आज क्लियर हो सकती है। इमोशंस को कंट्रोल में रखने और गोल्स पर फोकस करने का पूरा प्लान बना लो। आज का मंत्र, स्टे काल्म स्टे पावर।

0: फुल
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: हे सजिटेरियस, आज एडवेंचर के मूड में आप फुल ऑन लग रहे हैं, क्या बात है। कुछ नया सीखने या एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोलने से मत घबराइए, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। साथ में एक चैलेंज, हाँ, ये आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी को बाहर निकालेगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सबको इंस्पायर करेगा। आज का मंत्र, लाइफ को फुल एंथुसियाज्म के साथ एंजॉय करो।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: गुड मॉर्निंग कैप्रिकॉर्न, आज मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे नजर आएगा। पेशेंस ही आज सबकी बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन नए रास्ते खोल सकती है। कोई आइडिया पॉप करके आपके दिमाग में आ सकता है। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना मत भूलिए। आज का मंत्र, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की की है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: हे एक्वेरियस, आज आपके यूनिक आइडिया सबका अटेंशन खींच सकते हैं। एक क्रिएटिव सॉल्यूशन आज सबको सरप्राइज कर सकता है। इंस्पिरेशनल लोगों के साथ वक्त बिताइए, ओपन माइंड रखिए। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज का मंत्र, थिंक डिफरेंट ग्रो स्ट्रॉन्गर।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: हे पाइसेस, आज इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों पीक पर है। दिल की सुनो, लेकिन प्रैक्टिकल सोच भी साथ रखो। एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आपका दिन बना सकती है। थोड़ा मी टाइम लेकर अपनी एनर्जी रिचार्ज कीजिए। आज का मंत्र, ड्रीम बिग बट स्टे ग्राउंडेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey guys, good morning. नौ बजकर 37 मिनट 8th of July वेंसडे का दिन और हफ्ते के बिल्कुल मिडल के अंदर भाई ऐसे जैसे शरीर के मिडल के अंदर अगर एनर्जी आ जाए तो फिर लगता है सब कुछ सेट ही होगा. Ladies and gentlemen, RM2 और ये है मस्ट मॉर्निंग शो. अच्छा आपको याद हो कुछ टाइम पहले हमने एक गेम किया था एंड दैट वाज अबाउट MBC प्ले और यहाँ पर मिल सकती थी आपको एक राइड इन द हेलीकॉप्टर और वो जो विनर्स हैं वो हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में. हेलो गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: अच्छा इनका नाम जय है. मुझे वो शोले का डायलॉग याद आ गया, जय ये जो मौसी है, लेकिन मौसी तो नहीं लेकिन साथ में अपनी बीवी को लेकर आए क्योंकि वो जो इनाम था ना वो मिलना था फॉर अ कपल फॉर हेलीकॉप्टर राइड. सो कॉन्ग्रेचुलेशन जय साहब.
3: थैंक यू सर.
2: अच्छा मुझे पता है कि आप भारत से हैं और वहाँ पर भी प्राइवेट रेडियोज हिंदुस्तानी, तो कैसा लग रहा है कि मॉरिशस में ऐसे गाने चलते हैं और ऐसा ही मौसम है?
3: मौसम तो काफ़ी सुहाना है और आपको थैंक्स कहना चाहूँगा मैं विकास जी, क्योंकि आपके साथ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आधी एनर्जी मेरे में आ गई है और ये एनर्जी लेके मैं जाऊँगा हेलीकॉप्टर राइड के लिए.
2: क्या बात है.
3: और ये मौसम तो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ के लोग उससे भी बढ़िया हैं, तो ये आज मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर आपके रेडियो में आपसे बात करने के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने घर के मेंबर से बात कर रहा हूँ.
2: ओह दैट्स सो इनवाइटिंग मी सर. अरे क्या बात है. मैं बताऊँ इनको थोड़ा सा वो लग रहा था कि रेडियो पर बात करना. अरे आप हम और आप बात कर रहे हैं और वही नॉर्मल सी बात चलती रहती है. इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल है ना, और म्यूजिक के जरिए हम और आप कनेक्टेड रहते हैं एवरी सिंगल डे. साथ देते रहे. एक बार फिर से जय साहब आपको कंग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू सर.
2: टाइम एट द MBC.
3: थैंक यू सर.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों। और याद रखो, खुश रहना कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली चॉइस होती है। हर सुबह जब आप उठें तो एक बार अपने आसपास देखिए, सूरज की रोशनी, गर्म चाय की खुशबू, या किसी अपने की मुस्कान, या फिर एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज। अरे ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो लाइफ को खूबसूरत बना देती हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं कि हम ब्लेसिंग्स को देखना भूल जाते हैं। इसलिए आज की एक सिंपल चैलेंज को याद रखिए, हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव चीज जरूर ढूंढिए, देखिए मूड भी चेंज होता नजर आएगा और दिन भी। और एक और बात, लाइफ कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। ऑफिस हो, घर हो, या दोस्तों का सर्कल, जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सक्सेस भी ज्यादा मजेदार लगती है। सच है ना? हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप अपनी वर्ल्ड कप की टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ मिलकर उसको देख रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, तो मजा, खुशी कुछ और ही है ना। किसी की हेल्प करने से आप छोटे नहीं होते, बल्कि आपका दिल और बड़ा हो जाता है। कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन कोलैबोरेशन से पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। दूसरों की जीत पर ताली बजाइए, उनकी सक्सेस सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा रिटर्न गिफ्ट लेकर आती है। और हाँ, अगर आज कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा तो टेंशन मत लीजिए, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन एक नई लर्निंग जरूर देकर जाता है। स्माइल रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए और पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कीजिए।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Well, good morning time, Jay. Exactly 10 a.m. स्टूडियो में आ गए आशाओं से मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार
6: सभी को. नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभाल रहे हैं. इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना. भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं. ये जान लें कि पिछले साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और उसके एक दिन बाद ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हुआ था. यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद. कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी. उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी खामियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए ये परियोजना इस वक्त पायलट चरण पर है. डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट को 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के आगे बढ़ने पर ऐसा किया गया है क्योंकि इसी के चलते देश भर में भर्ती कार्रवाइयां चलाई जाएंगी और साथ में बाकी बचे कार्य भी पूरे किए जाएंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि हर एक रुपया स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया

0: जाएगा। हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पॉन्ज सिटी परियोजना पेश की। अडेप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग मिल रहा है। इस परियोजना को लागू करने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी नई भर्तियां कर रही हैं। पिछले वर्ष से अब तक संस्थापने कर्मचारियों की संख्या दुगनी कर चुकी है और अब अधिक इंजीनियर की नियुक्ति की भी तैयारी की जा रही है। विदेशी स्तर पर केरला में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिट्टी का बहाव इतना तेज रहा कि लोग इससे बच नहीं पाए और मिट्टी तले दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में अशोक समाचार। शुमेशिवाला कौटिमलित्या में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मिनी जगेसर पैदाइशी नाम बरोसा और जो पद्मिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे अविनाश जगेसर के मकान शुमेशिवाला कौटिमलित्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। एमिलियन स्ट्रीट पुद्रोदो विलाश में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री राधानंद को जो राधा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3:30 बजे उनके मकान एमिलियन स्ट्रीट पुद्रोदो विलाश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

वेलकम टू द सेकंड आवर 10:08 एंड मस्ट मॉर्निंग शो आपके साथ जुड़ा हुआ है। चाहते भी आप मूड में आ जाए, जैसे म्यूजिक चेंज होता है हमेशा की तरह।

0: your tickets at Oteo for Rise with Kung Kumar today.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए आज का मंत्र है कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ऐसे ही हैप्पीनेस के जोन में रहो। जिंदगी में हर दिन आपको दो चॉइसेस मिलती हैं, या तो प्रॉब्लम्स को काउंट करो या फिर ब्लेसिंग्स को। आप सोचिए क्या करना चाहते हैं। आज से एक नई हैबिट शुरू कीजिए। हर शाम सोने से पहले तीन ऐसी चीजें जरूर सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिसने आज आपका दिन बनाया या फिर चेहरे पर स्माइल लेकर आई। बिलीव कीजिए, ग्रैटिट्यूड से स्ट्रेस हल्का हो जाता है और लगता है कि इतना सब कुछ तो है मेरे पास टू सेलिब्रेट। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर स्माइल भी ऑटोमेटिक चेहरे पर। और याद रखिए, खुशियां हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं, छोटे छोटे मोमेंट्स में होते हैं, उसी में छुपी होती है। बस उसको निकालना, टैप करना, ये आपके ऊपर। तो मुस्कुराइए, अप्रिशिएट कीजिए और लाइफ की वॉल्यूम को फुल ऑन करके जी भर के जिए।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti. Hey, fashion lovers, स्वागत है आप सभी का। भाई हमारे जो स्टाइल कौन है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर फैशन के साथ साथ बॉलीवुड का तड़का भी मिलता है। कॉन्फिडेंस फुल ऑन, और फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं, आप कैसे उसको कैरी करते हैं ये भी जरूरी होता है। तो सिंपल हो जाइए एक ऐसी आउटफिट के लिए जो कि रेड कार्पेट लुक दे सकता है। मॉनसून हो, सनी डेज हो, कंफर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो ही असली ट्रेंड है। लाइट फैब्रिक्स, फ्रेश कलर्स और कंफर्टेबल फुटवेयर आपको रखेंगे स्टाइलिश और रिलैक्स भी। भाई ठंड थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में टर्टल नेक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, हुडीज ठीक है, लेकिन इतने क्लासी नहीं लगते हैं व्हेन यू गोइंग टू ऑफिस। तो इसे जरूरी है कि आप ऐसे टर्टल नेक्स के बारे में सोचिए जो कि नेटेड है, ठीक है, वो एक लाइन देते हैं, एक डिफरेंट कलर की लाइन गोइंग अराउंड द नेक, और उसी कलर को पकड़कर आप एक लॉन्ग स्लीव भी पहन सकते हैं। और बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेना है तो याद रखिए क्लासिक बेसिक्स, और साथ साथ में हम कहेंगे क्रिस्प व्हाइट शर्ट, कूल डेनिम या फिर स्टाइलिश स्नीकर्स, बस हीरो वाली जो लुक है ना वो गारंटीड है। अगर आप एथनिक मूड में हैं तो कलरफुल दुपट्टा, एक स्टेटमेंट जैकेट, क्यों नहीं। एक्सेसरीज भी अपना गेम खेलते हैं, क्लासी वॉच, ट्रेंडी सनग्लासेस या फिर सिंपल इयररिंग्स एकदम से इंस्टेंट अपग्रेड दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ओवर एक्सेसरीज नहीं, स्मार्ट एक्सेसरीज।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Allons chez Loulou. Chez Loulou, Mojo Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus La Vie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri, 32 portions à 122,50 €.
3: Loulou Hypermarché.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलो कुछ गाने होते हैं जो दिल से कनेक्ट करी जाते हैं और वहीं पर गायत्री जी का मैसेज, उन्होंने कहा कि लव द सॉन्ग दरखास्त, ये गाना सुनकर जाने हो क्या जाता है और साथ ही में जमाना लागे सुपर लवली गुड मॉर्निंग आपको सारा बानो और अब्दुल भी। और वहीं पर कहते हैं बस लॉर्ड गणेशा की आपके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रहे, हैप्पीनेस विजडम सक्सेस हमेशा आपके हर एक काम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपका हमेशा मॉर्निंग में मैसेज आ जाता है। और वहीं पर यालेश जो अपनी गरम गरम चाय और कुकीज़ के साथ जुड़ गए, ऑलराइट थैंक यू। और कहते हैं भाई वेंसडे की मॉर्निंग है और बहुत सारा प्यार पूरी टीम को, थैंक यू जी। और वहीं पर राजा हैं बले से और कहते हैं कि बस 90s गाने बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर एक मिक्स म्यूजिक है। एंड किरण के लिए साथ में ऑल्सो गोज आउट फ्रॉम ऑल द वंस एट विच वोबा, चलिए उन सभी के लिए। और वहीं पर कैसे हैं, सब कुछ ठीक? टार्ज़न का अगर टाइटल ट्रैक हो जाए, टार्ज़न ओ माय टार्ज़न, वो जंगल गया है, उसको बाद में लेकर आएंगे। हाँ वैसे प्रेमा जी पुत्र दो से, चलिए नोट कर लिया, कोशिश रही हमारी जारी। और एंजॉइंग द सॉन्ग्स, आओ प्यार करें, अनदर ब्यूटीफुल वन विदुषा है हमारे साथ और कहते हैं नमस्ते गुड मॉर्निंग। और वहीं पर प्लीज़ एक गाना स्पेशली टू अनीश और मोगू से है, पापा सुनील, मामा है ममता एंड भाई अश्विन की तरह से, हे गुड मॉर्निंग सुदेवी जी और पामलू मुझसे और कहते हैं एंजॉइंग द सॉन्ग्स। अगला गाना प्लीज़ हमारे नाम, पूरे परिवार के नाम।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो कोट क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएस सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री सॉक

0: Yes, getting you the best mix of music every single day. इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा यूं ही साथ देते रहें और
1: सुनते रहो।
0: थोड़ी देर में 4 बजे के समाचार।

0: Okay, good morning, time check. It's 11 a.m. या शाह के स्टूडियो में लेकर संक्षिप्त समाचार उनसे मिलते हैं. नमस्कार
1: सभी को. नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार. आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभाल रहे हैं. इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना. भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं. ये जान लें कि पिछले साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद ही स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित किया गया था. कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी. उन्होंने कहा कि लोगों को भर्ती करना जरूरी है, इसी कारण ये रकम बढ़ाई गई है. ये रकम आपको बता दें कि 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाई गई है. शुरुआती में उन्होंने बताया कि शुरुआत में इतनी रकम की ज़रूरत नहीं थी और 19 मिलियन रुपए वापस कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए गए थे, लेकिन अब जब काम आगे बढ़ रहा है तो इन पैसों की भी ज़रूरत पड़ रही है. पूर्व सरकार द्वारा उन्होंने कहा कि 2 इलाकों में कोई भी कार्य नहीं किए गए थे. और जहां तक फाइनेंस की बात है, उन्होंने कहा कि ये उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि खर्चों पर पूरा ध्यान रखें. लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी द्वारा एक नई परियोजना पर विचार किया जा रहा है, जिसका नाम है स्पंज सिटी. हर बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या आती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में इस परियोजना की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की. स्पंज सिटी ऐसे शहरों का निर्माण करना है जहाँ पर जो टारकोल और जो ज़मीन है वो पानी को सोख कर उसे रिसाइकल कर सकते हैं. फिलहाल

0: इस परियोजना को पर अभी के लिए विचार ही किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ और अर्जेंटीना का स्कोर रहा 3-2, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनाल्टी में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। कल गुरुवार रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रामदानी रोड प्लेंडी पपाई में साठ साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री विजय बहादुर की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ गुरुवार को सुपहर 3 बजे इताली में किया जाएगा। शिवाला कोची मृत्या में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती पद्मिनी जगेसर पैदाशी नाम भरोसा और जो पद्मिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुपहर 3 बजे उनके बेटे अविनाश जगेसर के मकान शिवाला कोची मृत्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। आले ब्रियन कास्टेल में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिज़ जुबैदा बीबी तमन पैदाशी नाम गोकुल इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12:30 बजे उनके मकान आले ब्रियन कास्टेल से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 12:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलो धीरे धीरे से लेकिन पहुंच गए थर्ड आवर 11:08. हर दिन की शुरुआत होती है तो फिर बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है, ये भी करना है वो भी करना है, भागा दौड़ी कभी ज्यादा कभी थोड़ी. हाँ लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस. इतनी टेंशन लेने का फायदा नहीं है. अगर सुबह सुबह सोच लेंगे कि ओह कैसे होगा, कैसे इतनी हिम्मत आएगी, ये जिंदगी क्या चैलेंज दे दी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है नौजी. आपको बताएं कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले. बस आपको उसको सही तरह से चैनलाइज करना होता है. तो देखिए साहब, चैनल की बात करें तो आपके साथ है बॉलीवुड का नंबर वन म्यूजिक चैनल रेडियो मस्ती आपके साथ, और चाहते हैं कि मॉर्निंग में आप टेंशन फ्री हो जाएं. वैसे अभी तो काफी काम शुरू हो चुका है, अगर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देन टेक अ ब्रेक विद म्यूजिक.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए चलते हैं एक और लाइफस्टाइल मंत्र की तरफ और आज की फास्ट लाइफ में एक बात कभी मत भूलिए भाई, ऐसा है कि मैं से ज्यादा पावरफुल होता है हम। घर हो, ऑफिस हो या दोस्ती, जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो सपोर्ट करते हैं और हर एक टीम मेंबर की अहमियत होती है। हर मुश्किल का सलूशन आराम सा मिल जाता है, इसलिए क्योंकि सबका साथ है, सबके आइडियाज़ हैं, सबका व्यू पॉइंट है और सबके सलूशंस। किसी की तारीफ करने में सिर्फ दो सेकंड

0: लगते हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस पूरे दिन के लिए बढ़ सकता है। इसलिए आज किसी एक इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट जरूर कीजिए। पॉजिटिव वर्ड्स एक ब्यूटीफुल गिफ्ट होते हैं, देना चाहें किसी को।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

ये सच बात है कि कहते हैं कि अगर आप अकेले हो तो जल्दी जाएंगे किसी सफर में आगे, लेकिन किसी के साथ हो तो बस चलते ही जाएंगे। पता नहीं लगता है कि ये सफर कैसे कट गया। नहीं, कुछ बातों में दिल हल्का हो जाता है, किसी का साथ मिलता है तो लगता है कि आप कोई चिंता नहीं, देख लेंगे, संभाल लेंगे, दोनों मिलकर देख लेंगे। आरम टू बाई है शोना, दिल में कोई बात है तो हमसे कहो ना, 5491294 पर। थोड़ी देर में आके मैसेजेस।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए एक नजर आपके मैसेजेस की तरफ, जहां पर इतने प्यार से हमने आपको न्योता दिया कि जल्दी जल्दी पहुंचो इनबॉक्स में। जितनी भी सिचुएशन है वो सब अलग अलग होती हैं। कोई कहता है कि खाना पीना तैयार है, कोई कहता है कि आज सुबह से भागा दौड़ी, और कोई कहता है कि नींद से आ रही है। फिर देखते हैं यहाँ पर कौन है। अरे कैसे हैं आप, कहते हैं सुन रहे हैं म्यूजिक, सुन रहे हैं। और प्लीज़ म्यूजिक के फॉर्म में जो हीरे आप दे रहे हैं उनको चलाते रहो। मीठी रीमा के लिए जनिता श्रेष्ठा, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिवसन फैमिली है फ्लैग से, गॉड ब्लेस। एंड हेलो जी, जीना जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। बस गणपति पप्पा की कृपा दृष्टि हम सब पे रहे। और कहते हैं स्वीट मोमेंट्स इन लाइफ कम अलोंग नॉट विद द ग्रीटिंग्स यू रिसीव बट द थॉट दैट समबडी विशेस द बेस्ट फॉर यू एवरी सिंगल डे। कोई है जो आपके लिए सोचता है? जीना जी, जीना तो ये है, असली जीना तो यही है। गुड मॉर्निंग आपको। एंड वहीं पर कहते हैं हैव अ लवली डे, मेक अ पब्लिक हैप्पी विद लवली सॉन्ग्स, लव यू रेडियो मस्ती। ये कहना है पद्मिनी का। पद्मिनी जी थैंक यू सो मच। ये सुनकर मेरे अंदर जो एनर्जी आ गई ना, उसको रोकूं कैसे। चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेरे जाने का वक्त, थैंक यू सो मच जितने प्यार से आपने साथ दिया, आपने इसमें भी रेट्रो रिदम साथ देते रहिए और यूं ही म्यूजिक का मजा लेते जाइए। म्यूजिक थेरेपी AM to BM 24/7 RM2

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Well, good morning, आप सभी को बस देखते देखते afternoon में बदलने वाला है ये दिन 8th of July Wednesday का दिन. Time check exactly 12 PM. Good afternoon. स्टूडियो में आज आशनाओं से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार
6: सभी को. नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार. मॉरिशस में जो तेज लहर की चेतावनी जारी की गई थी उसे हटा दिया गया है, और फिर भी दूर समंदर में, गहरे पानी में, दक्षिणी समंदर में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं. आम जनता से लगूनों में और दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में जो जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा था वो भी दूर जा रहा है, जिस वजह से मॉरिशस में तेज हवाओं की जो चेतावनी जारी की गई थी उसे भी हटा दिया गया है. कल राष्ट्रीय सभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी. उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी खामियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए ये परियोजना इस वक्त पायलट चरण पर है. डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट को 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के आगे बढ़ने पर ऐसा किया गया क्योंकि इसी के चलते देश भर में भर्ती कार्रवाइयां चलाई जाएंगी और साथ में बाकी बचे कार्य भी पूरे किए जाएंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि हर एक रुपए स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा. रिविया जुहापा के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा. इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री रणजीव उचित ने कल राष्ट्रीय सभा में की. इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे. आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर शामिल होंगे. विश्व कप में वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए. अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ, एक तगड़ा मैच जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की. उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0. अंत में पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में वो अपनी जगह बना गया है. क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच.

0: ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। अली ब्रियन कास्टेल में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिस जुबेदा बीबी तमन पैराशिनाम गोकुल इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12:30 उनके मकान अली ब्रियन कास्टेल से उठा कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: Retro Rhythm. गुड आफ्टरनून, नमस्ते दोस्तों, और वेलकम है आप सभी का रेट्रो रिदम में विद नलमणि, जहां हर गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं है बल्कि एक याद है। एंड अगले दो घंटे में हम लेकर आएंगे आपके लिए 70s, 80s और 90s के वो एवरग्रीन बॉलीवुड क्लासिक्स जो आज भी दिलों पर राज करते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, मेमोरीज को रिवाइंड करते हैं साथ में, और चलिए अंदर प्यारा सा गीत की ओर आपके ही आरएम टू रेडियो मस्ती पर।
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: ओल्ड इज ट्रूली गोल्ड है हाँ जी, एंड पता चल जाता है क्योंकि सिंगर चाहे क्यों ना बदल जाए लेकिन गाने के बोल हमेशा हमें उन मेमोरीज की ओर लेके जाएगा। एंड इन गानों की सबसे खास बात यह है कि जनरेशन बदल जाती है लेकिन इनका जादू कभी कम नहीं होता।

0: पेरेंट्स से लेकर यंगस्टर्स तक सबके दिल में इन क्लासिक्स की एक स्पेशल जगह है। तो चलिए इसी म्यूजिकल मैजिक को आगे बढ़ाते हैं आपकी रेट्रो रिदम मेनमनी के साथ, इस बार आशा भोंसले जी की आवाज में।
1: रेट्रो रिदम RM2

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Retro Rhythm.
1: आपसे हम हैं और आपके मैसेजेस के जरिए हम कनेक्ट कर पाते हैं. थैंक यू टू बड़ी अलेश कनेक्टेड रहने के लिए. अब्दुल जी, सायरा बानो जी को भी बड़ा सा गुड आफ्टरनून. वाकवा से वी हैव अ विश्वानी धुमन जी जो अपने लव्ड वंस के लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. और आप है इंदिरा, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता गजाधर जी. तो हो जाए आप सभी के नाम गाना. स्पेशल सॉन्ग कमिंग अप राइट नेक्स्ट आपकी आरएम टू रेडियो मस्ती पर.
0: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे नशा तो हवाओं में घुल गया है, झूम रहे हैं बिना वजह के। म्यूजिक का इफेक्ट है भाई, आपके रेट्रो रिदम का भी इफेक्ट है। तो इसी वाइब के साथ मिलेंगे एक बार फिर नेक्स्ट आवर में। अभी के लिए एक नेक्स्ट गाने को एंजॉय करते हैं साथ में आपके ही आरंजू वीडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चिरी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार
4: नमस्कार रौदाव रणनीतिक व्यापार और खरीदारी के सिलसिले में मॉरीशस और सिंगापुर अपना सहयोग मजबूत कर रहे हैं गए 6 जून

0: को मॉरिशस में सिंगापुर के उच्चायुक्त मिंग यांग लिम ने दोनों मुल्कों के दरमियानी रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में व्यापार मंत्री सी क्यूएन से मुलाकात की। तिजारती यानी व्यावसायिक साझेदारी के अलावा सिंगापुर की महारत बांटने पर भी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने आपसी फायदों के लिए सहयोग के नए इम्कान पर भी ख्याल पेश किए। एमर्शस पर क्रोल रिपोर्ट की जानकारियों के मद्देनजर आज पुराने एडमिनिस्ट्रेटर सतो हाजी अब्दुल्ला पोटली इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड और एमर्शस के बीच ठेके को लेकर भ्रष्टाचार के इल्जाम के तहत उनसे पूछताछ की गई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें शर्त पर रिहा किया गया था। एडन कॉलेज ने अपने वजूद का 75वां साल मनाया। एक समारोह के दौरान रुजिर में कॉलेज ने अपने पुराने छात्रों, अध्यापकों और शख्सियतों को एकत्र किया। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज के सफर और बच्चों के समर्थन में कॉलेज के योगदान की सराहना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। इस हालत से कमजोर समझौते को लेकर मध्य पूर्व की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने का डर मंडला रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ समाचार सुनिए। रॉयल रोड ग्रांड पॉइंट पीमा में 76 साल की 76 years old श्री अजय किस्टो, जो सीताराम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर रॉयल रोड ग्रांड पॉइंट पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट बीच की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मोटी लेन बॉपिन्यूनी तेरूज में 73 साल के 73 years old श्री केशोर रिडोई, जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर मोटी लेन बॉपिन्यूनी तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

0: रेट्रो रिदम।
1: 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। गाने के बोल ऐसे हैं जो देखा भी नहीं कर सकते। सो गुड यार, और आर्क के लिए बस दी बेस्ट ही लाते रहेंगे आपके ही रेट्रो रिदम में विद नर्मनी। एनएस आखिरी आओ में खूब मस्ती करेंगे और 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार अभी भी है। सो डोंट एज हेजिटेट अपने डेडिकेशन सेंड करने के लिए। सी यू इन द मैसेजेस। अभी के लिए गाना हो जाए
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: Retro Rhythm.
1: दिल में हो आप और मैसेजेस में भी आप है फिया जी. नमस्ते जी, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद हियरिंग फ्रॉम यू. आप गाना मांग रहे हैं अपने लिए, तो प्यारा वाला गाना ढूंढ कर चलाएंगे आपके लिए. फ्लैग से वी हैव अर्जना जी. हेलो डिया, आप गाना मांग रही है अपनी बेटी रीमा, जनिता, शेष था, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि और सिर सरन फैमिली के लिए. तो हो जाए आपके लिए प्यारा सा गाना नेक्स्ट कमिंग अप राइट नेक्स्ट आपके लिए आरम टू रेडियो मस्ती पर.
0: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

Retro Rhythm. And yes, it's your retro rhythm का सफर झूमो यारो, क्योंकि आज है बी ए किड अगेन डे। कभी सोचा है बचपन कितना सिंपल था, ना बिल्स की टेंशन थी, ना डेडलाइंस का प्रेशर, बस दोस्तों के साथ खेलना, कार्टून्स देखना और हर छोटी सी बात में खुश हो जाना। तो आज थोड़ी देर के लिए अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दीजिए, अपना फेवरेट पुराना गाना सुनिए, आइसक्रीम खाइए या बस दिल खोल के हंस लीजिए, क्योंकि जिंदगी तभी खूबसूरत थी, आज भी हो सकती है। तो चलिए इसी बचपन वाली फीलिंग के साथ नवा गाना आपके नाम करते हैं आपके रेट्रो रिदम में।

बाजी ताली, हर मुखड़े पर हसीनों के आ गई फिर से लाली। सन सन करती बॉल से खुद को तो बचाया पर दिल

हमने जब घुमाया प्यार का ये बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा

उसने फेंका लेग ब्रेक तो हमने मारा छक्का, आउट करता कौन हमें, हम खिलाड़ी पक्का, अरमानों की क्रीज से बढ़ गए हम तो आगे और

का मैच क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW।

0: Retro Rhythm.
1: यस, रेट्रो रिदम का सफर है ना. आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए. एंड मैसेजेस के साथ साथ आज दो बर्थडेज है हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए. एंड आप है देव जी पारिस से. एंड आज है आपकी बिलवड सन अमीश का जन्मदिन. और आप प्यारा सा गाना मांग रहे हैं आपकी तरफ से मम्मी अमृता की तरफ से अंजू इवान एंजेलिक आला अलिसिया के लिए. एंड अनदर बर्थडे भी है आप है समृता ईश्वर जी क्रिप कैसे ना. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाना अपने बेटे हर्ष के लिए. विशेज आपके पापा दीपक की तरफ से सिस्टर्स श्वेता रिया भाई यश ब्रदर इन लॉ काविश एंड छोटी सी नीश कृषा की तरफ से. तो आपको विश करते हैं हैप्पी वाला बर्थडे और पूरी आर एन टू टीम की तरफ से.

और इसी खूबसूरत गाने के साथ आज के रेट्रो रिदम से मैं नलमनी लेती हूँ आपसे इजाजत। उम्मीद है कि आपका वेडनेसडे म्यूजिक और खुशियों से भरा रहे। मुस्कुराते रहिए ऐसे ही और ऐसे ही। कीप लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। रणनीतिक व्यापार और खरीदारी के सिलसिले में मॉरिशस और सिंगापुर अपना सहयोग मजबूत कर रहे हैं। गए 6 जून को मॉरिशस में सिंगापुर के उच्चायुक्त मिंग यांग लिम ने दोनों मुल्कों के दरमियानी रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में व्यापार मंत्री सी क्यूएन से मुलाकात की। तिजारती यानी व्यावसायिक साझेदारी के अलावा सिंगापुर की महारत बांटने पर भी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने आपसी फायदों के लिए सहयोग के नए इम्कान पर ख्याल पेश किए। एमर्शस पर क्रू रिपोर्ट की जानकारियों के मद्देनजर आज पुराने एडमिनिस्ट्रेटर सातो हाजी अब्दुल्ला पोटली इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ग्रैंड थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड और एमर्शस के बीच ठेके को लेकर भ्रष्टाचार के इल्जाम के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडन कॉलेज ने अपने वजूद का 75वां साल मनाया। एक समारोह के दौरान रुजल में कॉलेज ने अपने पुराने छात्रों अध्यापकों और शख्सियतों को एकत्र किया। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज के सफर और बच्चों के समर्थन में कॉलेज के योगदान की सराहना की गई। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी आई है। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। इस हालत से कमजोर समझौते को लेकर मध्य पूर्व की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने का डर मंडला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मोटीलेन वापियोलेटेरूज में 73 साल के 73 years old श्री किशोर रिडोई जो राजेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे के घर मोटीलेन वापियोलेटेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वही गाना लेकिन विद अ ट्विस्ट लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ। दोस्तों, 2:05 हो गए हैं, वेडनेसडे आफ्टरनून पहुंच चुके हैं इन द मिड वीक एंड इट्स 8th of July। सो व्हाट्स योर प्लान, क्या है आपके प्लान्स, जरूर बताएं हमें ऑन 5499-1294 ताकि हमें भी तो पता चले हमारे डियर लिसनर्स वीकडेज पर क्या करते हैं। दिस टाइम आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, थोड़ा सा टी ब्रेक, थोड़ा सा चाय टाइम, लेकिन हम तो रहेंगे आपके हम सफर। इस वक्त कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर पर ही है आराम फरमा रहे हैं और इस मौसम का मजा ले रहे हैं। ओ माई गॉड, विंटर वाली आफ्टरनून में अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिल जाए, थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करने का मौका मिल जाए, इससे बेटर और क्या हो सकता है। और साथ ही मिड वीक में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, तो बस 2 दिन का और इंतजार, उसके बाद तो आ ही रहा है वीकेंड लेकर खुशियां ही खुशियां। सो फॉर नाउ आपके इस मिड वीक को भी हम बनाने वाले हैं खास एंड स्पेशल बी टाउन की अपडेट्स के साथ। मैं हूं परी आपके साथ, रहेगा साथ आपका और मेरा टिल 4 PM। यस, और कुछ बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और आप भी अगर कनेक्टेड हैं, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट,
4: टक टक बॉलीवुड।

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: इस गाने में तो तृप्ति डिमरी जो हॉटनेस लेवल है वो हाई करती नजर आई थी, टेम्परेचर थोड़ा हाई करती नजर आई थी अपनी हॉटनेस के साथ. एंड यहाँ पर एक हीरो है जो आजकल टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर रहे हैं. तो चलिए आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपने परिवार के साथ फैमिली वेकेशन का मजा ले रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पति सह

अली खान की कुछ तस्वीरें शेयर की है जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दी दैट करीना कपूर एंड सैफ अली खान इन दिनों छुट्टियों का मजा ले रही हैं, वो भी फुल फैमिली के साथ। और आज वेनसडे को करीना ने सैफ अली खान की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, शेयर की है। इन तस्वीरों में सैफ समुद्र से यानी कि सी से बाहर आती नजर आ रही है और उन्होंने ऑरेंज कलर के स्विम शॉर्ट्स पहने हुए हैं। और करीना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है गर्मियां अच्छी बीत रही है, यानी कि समर्स अच्छे बीत रहे हैं उनके। और इसके साथ उन्होंने ट्यूसडे को यानी कि कल अपने बेटे तैमूर की भी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें तैमूर उनके पास खड़े नजर आ रहे थे और सामने फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सैफ और करीना इस समय ग्रीस में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, अपने समर का मजा ले रहे हैं। सो वेल, अभी के लिए तो उनको हैप्पी हॉलीडेज विश करेंगे और आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों। नॉट फॉरगेट, काम करते हुए भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, दैट्स रियली स्वीट। और काम के बीच आपने सुना RM2 रेडियो मस्ती को, तो बस आपकी आफ्टरनून को हम बनाएंगे खास एंड स्पेशल। पी टाउन की अपडेट्स और साथ में कुछ गाने आपके इस आफ्टरनून को थोड़ा सा म्यूजिकल एंड मैजिकल बनाने के लिए, और साथ में तड़का लगाने के लिए आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर। चलिए, सैफ अली खान की बात हुई है और कुछ दिनों पहले ये तो हम जानते थे कि उनके घर में चोर घुस आया था। कहानी कुछ ऐसी ही थी जो इस गाने में हमें सुनने को मिली थी, ऐसा ही कुछ हो गया था उनके साथ। लेकिन चलिए, अभी के लिए तो हम जानते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दे आर एंजॉयिंग देयर हॉलीडेज। सो फैमिली को गुड विशेस, एंड हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, एंजॉय दिस वन।

0: Radio Musty.
1: एंड वेल फ्रेंड्स इट्स 2:34 और आपको बता दें राजकुमार राव की अगली फिल्म दादा का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का किरदार निभाने वाले हैं लेकिन राजकुमार से पहले एक एक्टर था जो दादा की बायोपिक में काम करना चाहता था तो चलिए दोस्तों आपको बता दें सौरभ गांगुली की जिंदगी पर

0: सौरभ गांगुली स्टोरी का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में राजकुमार दादा के लॉज में किए गए आइकॉनिक सेलिब्रेशन को रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में मशहूर एक्टर राजकुमार राव और सौरभ गांगुली का किरदार निभा रहे हैं और खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत सौरभ गांगुली की बायोपिक में काम करना चाहते थे। साल 2020 में उनके निधन के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुशांत इस रोल को लेकर काफी एक्साइटेड थे। बताया जाता है कि MS धोनी की बायोपिक करने के बाद सुशांत गांगुली का किरदार बड़े पर्दे पर निभाना चाहते थे और सूत्रों के मुताबिक सुशांत सौरभ गांगुली की जिंदगी पर फिल्म बनने के जो राइट्स है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उन्हें पर्दे पर निभाने को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। सुशांत दादा को बहुत पसंद करते थे और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम से इस बारे में बात शुरू की थी और कहा था कि इट्स हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की टीम और गांगुली के बीच साल 2018 में बातचीत भी हुई थी, लेकिन उस समय गांगुली अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया था। लेकिन इस खबर के बाद दिस मूवी इज मोस्ट स्पेशल नाउ। ये तो हम जानते हैं दैट जो भी लोग सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्टेड थे या फिर उन्हें पसंद करते थे, दैट्स अ बिग बिग स्टोरी फॉर देम। एंड अब बताया जा रहा है दैट ये जो फिल्म है जल्द रिलीज होने वाली है और इसमें सौरभ गांगुली का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं राजकुमार राव। तो चलिए इस फिल्म का इंतजार रहेगा और अभी के लिए हमारे जो लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, इट्स 2:35 आफ्टरनून टाइम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बी टाउन की खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज।
1: सपनों में आते हो दिल में कब आओगे,
2: सुनते रहो
1: रातों को जगाते हो दिन मेरे कब सजाओगे।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। साझा अस्पताल अफलाक में अब नई सिटी स्कैन सर्विस शुरू हो गई है। मुरशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में ये पहली बार है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने आज सिटी स्कैन सर्विस का उद्घाटन किया। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी और मरीजों के बेहतर इलाज के वास्ते अच्छी सेवाएं प्रदान करने की सरकार की कटिबद्धता का उल्लेख किया है। इस नए सिटी स्कैन सेवा से मरीज पूर्वी क्षेत्र में ही अपना स्कैन करवा सकते हैं और उन्हें दूसरे अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। आज एमरशस के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर सातो हाजी अब्दुल्ला पोटवी इंटरमीडिएट अदालत में पेश हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ग्रांटो थॉन्टन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड और एमरशस के बीच ठेके को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत उनसे पूछताछ की गई थी और इसी सिलसिले में वो पोटवी अदालत में पेश हुए। रणनीतिक तिजारत और ख़रीदारी के सिलसिले में मॉरिशस और सिंगापुर अपना सहयोग और गहरा कर रहे हैं। गए 6 जून को मॉरिशस में सिंगापुर के उच्चायुक्त मिंग यान लिम ने दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने की दिशा में व्यापार मंत्री सीक्यूएन से मुलाकात की। तिजारती यानी व्यावसायिक साझेदारी के अलावा सिंगापुर की महारत बांटने पर भी बातचीत हुई है। विदेश में मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है क्योंकि दोनों देशों के बीच हवाई हमलों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इस बीच तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आई है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: More music, music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
7: Radio Musti.

0: more music in the mix.
1: Aaj Azadi Hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: सो वेल फ्रेंड्स, आपका वॉर्म वेलकम कर रहे हैं 3:06. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. आजकल मौसम काफ़ी बेईमान सा, और ऐसे गाने को डेडिकेट करना चाहेंगे आप सभी के लिए. मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए ऑलवेज म्यूजिकल मौसम राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा चल 4 PM. गुड म्यूजिक आपके लिए. एंजॉय दिस वन.

So well, that was taken from the film Pati Patni और वो दो. वैसे तो बहुत सारे पुराने गाने हैं जो हमने इस फिल्म में देखे, और आजकल यही तो फंडा है, यही तो ट्रिक है कि भाई जो भी पॉपुलर गाने हैं उन्हें फिल्म में डाल दो और फिर उसके बाद देखो दैट लोग गाने देखने तो फिल्म देखने आ ही जाएंगे. लेकिन ऐसे बात नहीं बनती है. चलिए इसे कुछ गाने हमने सुने इन द फिल्म पति पत्नी और वो दो, लेकिन फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई. भाई ऐसा कमाल तो बस धुरंधर ने दिखाया, जहां पर पुरानी फिल्म के गानों को एक नए अंदाज में पेश किया गया और हर एक गाना था एकदम फायर. सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो हम प्यार की बात कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में. ये ब्यूटीफुल गाना आप सभी के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं. सो आफ्टरनून टाइम 3:17, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़ ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, कल हमने दिलजीत दोसांझ की लेटेस्ट रिलीज सतलज के बारे में बात की थी, जिसे ओटीटी पर रिलीज करने के दो दिन में ही ओटीटी से हटा दिया गया है। और फिल्म सतलज डायरेक्टर हनी त्रिहान ने बनाई है और ये 1990 के दशक में मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी और उनकी मौत पर आधारित है। अब फिल्म को Z5 से हटा दिया गया है और इसे हटा दिए जाने के बाद फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपनी ओर से इसके ऊपर बयान दिया है। इस मामले पर बात करते हुए अनुराग कश्यप ने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है, भले ही वो पायरेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को देखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया। दरअसल अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी एक स्टोरी शेयर की है और इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है, किसी फिल्म को बैन करने के साथ चीज ये है कि आप कुछ खबरों को लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि आप इसे जितना बैन करोगे लोग उसे उतना ही देखना चाहेंगे और मेरा इस फिल्म को देखने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब इसके बैन होने के बाद मुझे ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अपील की है लोगों से कि अगर हो सके तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। इसके कुछ देर बाद उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने सतलज फिल्म का प्रमोशन करते हुए लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की, भले ही वो पायरेटेड कॉपी से देखे। और उन्होंने स्टोरी में लिखा, प्लीज सब लोग देखें, पायरेट करके देखो, लेकिन इसे देखो सही। और वेल, इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी नजर आए हैं एज अ CID ऑफिसर और दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ये तो है कि ये जो स्टोरी है, ये जो फिल्म है, वो एक रियल स्टोरी पर आधारित है और इसे देखना तो ज़रूरी है, ये कहना है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का। सो जैसे हमने बताया था कि दो दिन के बाद ही इस फिल्म को हटा दिया गया OTT से, कुछ बात तो ज़रूर होगी, लेकिन अभी के लिए जिन्होंने भी इस फिल्म को देखा है कर रहे हैं इस फिल्म की तारीफ और दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग की तारीफ।

इट्स टाइम आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस जो आपने इतने प्यार से पहुंचाए हैं ऑन 5499124। सो सबसे पहले तो कहेंगे थैंक यू आप सभी को कि आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो यहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर डेविसन, लाल माती से हमारा साथ दे रहे हैं। सो होप यू हैविंग अ नाइस टाइम डेविसन, गाना आपके नाम एंड गोज आउट फॉर ऑल योर फैमिली ऑल योर फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ। और चलिए यहाँ पर विजया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं आप भी, और हमारे साथ इतने प्यार से आप हमेशा कनेक्ट करती हैं। सभी के लिए जो नेक्स्ट गाना है इट विल बी फॉर यू स्पेशली एंड बहुत सारा प्यार आपके लिए। साथ ही यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी भी आ गई है अपनी रोशनी बिखेरने और कहती है बहुत ज़्यादा ठंड है और गानों को सुन रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। ऐसे में जो अगला गाना है गोज आउट फॉर यू रोशनी एंड एंजॉय योर आफ्टरनून एंजॉय योर टाइम रेडियो मस्ती के साथ। हैप्पी विंटर सीजन, ड्रिंकिंग गर्मा गर्म चाय, ईटिंग समोसा, और सभी बगन परिवार, बिमल परिवार, खिरोदर परिवार हमारा साथ दे रहे हैं। सुया बिहारी कोंगो मासी सभी के लिए भेज रही हैं प्यार एंड स्पेशल विशेस एंड यू आर एंजॉइंग योर आफ्टरनून एकदम परफेक्टली, चाय और समोसे और उसके साथ साथ बी टाउन की अपडेट्स एंड कुछ गाने आपके नाम। सो थैंक यू सो मच सुया बिहारी जी, ऐसे ही साथ देते रहिए, गाना होगा आपके लिए। और चलिए यहाँ पर कहते हैं विशिंग नेफ्यू क्रिश अ वेरी हैप्पी बर्थडे विशेस लेकर आए हैं मामा विधि, पापा सतीश, चाचा चिक, नानी दीदी, उनके सभी परिवार, काजल है, जीजू नितीश, एंड फ्रॉम ऑल सोराय पमिसा, दर्शन, सुनक सिंह, हरदन एंड सी बालक परिवार, स्टैनले रोजर से भेजा है उनके लिए प्यार। सो गाना होगा आपके नाम एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे विशेस है हमारे पूरे टीम की ओर से। और चलिए यहाँ पर कहते हैं गाना हो जाए फॉर ऑल माई कलीग, सभी टीचर्स जो साथ दे रहे हैं, नैना है, रूपी, सोनिया, पिंकी, रॉकी है, रुसिया और सनी, एशले, ललिता जी उनको याद कर रही हैं और कहती हैं लव यू गाइस, ये गाना है आपके सभी कलीग्स के नाम। सो चलिए दैट्स अ स्वीट मैसेज, आपके सभी लव्ड वंस के नाम होगा अगला गाना। एंड यहाँ पर कुमार देवीचरण आप भी हमारा साथ दे रहे हैं घर पर फुल वॉल्यूम पर एंजॉयिंग रेडियो मस्ती, गाना फॉर पापा श्याम देवीचरण ऑफ फेबे, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज। और साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर संपत एंड न्यू ग्रोव से हमारा साथ दे रहे हैं। सो थैंक यू जी, ऐसे ही साथ देते रहिए, मैसेजेस डेडिकेशन हम तक पहुँचाते रहिए। प्रीतम जी आए हैं, आप भी अपना प्यार लेकर हमेशा साथ देते हैं, सो थैंक यू सो मच, इतने प्यार से कनेक्ट करते हैं आप। सो गाना आपके नाम फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वर्षा, सभी बेटू परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम पीटो, सो ऐसे ही साथ देते रहिए एंड हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून। बानी खूबलाल हमारा साथ दे रही हैं रिवर जो हाँ पास से, और हैप्पी बर्थडे विशेज ये है आपके नाम, 15 इयर्स की हुई हैं एंड विशेज सभी परिवार सभी अपनों की ओर से। तो यहाँ पर स्पेशल विशेज उन तमाम लोगों के नाम जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, B-Town की खबरें तो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन now

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: और चलिए दोस्तों, इट्स 3:54 एंड विद दिस नेक्स्ट ब्यूटीफुल मैशअप इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय। मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज। तब तक के लिए साथ दीजिए हमारा हमारे इस रेडियो स्टेशन पर, और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे। अभी के लिए तो विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी वेडनेसडे। हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मस्ती के साथ।

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन R&T रेडियो मस्ती जस्ट चेक योर टाइम इट्स ऑलरेडी 4 PM
1: R&T रेडियो मस्ती
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music.

0: आइए सुनते हैं समाचार और सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। कल रात राष्ट्रसभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहस जारी रखी गई। इन विधेयक का मकसद शिकार लोगों की बेहतर हिफाजत करने के साथ साथ हिंसाओं की किस्मों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। इनमें आर्थिक हिंसाएं, मानसिक और जज्बाती हिंसाएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा सजाओं को और मजबूत किया जाएगा और रोकथाम के कदमों को भी और ठोस किया जाएगा। पहली जून से कैनल प्लस के ग्राहकों को टीएफएन ग्रुप के चैनलों का एक्सेस नहीं है, यानी 5 चैनल कम हैं। इस फैसले से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। पहली बार नहीं है कि ऑडियो विजुअल क्षेत्र के दो बड़े ऑपरेटरों के बीच इस तरह का झगड़ा है। सन 2018 से बातचीत में राय अलग अलग रही है, लेकिन समझौते बंद गए हैं। एक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना और बच्चों के भविष्य में और ज्यादा निवेश करना, ये जोश शॉल बुनियाद का मकसद है, जिसने आज अपनी फोटोवोल्टाइक परियोजना की शुरुआत की। उद्देश्य संस्था की गतिविधियों के खर्चों को बहुत हद तक कम करना है और सामाजिक समर्थन को मजबूत करना है। विदेश में चीन के केंद्र में रिकॉर्ड तौर बरसातों की वजह से कम अज कम 17 लोगों की मौत हुई है। 67,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। दक्षिण में सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक एक क्रिप्टो करेंसी बिलियनेयर ने नाइजल फराज को 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का तोहफा दिया था। बैंकरों ने ये एनसीए को ये जानकारी दी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक था। इससे रिफॉर्म यूके के नेता पर बहुत दबाव पड़ गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। पायोंकू रोड मोसेलमों सेंट अंतवान गुडलैंड्स में 77 साल की 77 years old श्रीमती जगवंती राजकुमार। श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाइशी नाम जोधवा, जो इंद्रानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी बाद में इनके बेटे विमर राजकुमार के घर पायोंकू रोड मोसेलमों सेंट अंतवान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। रामदानी रोड प्लेंडी पापाई में 60 साल के 60 years old श्री विजय बहादुर की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। रिजर्वर रोड उली रोड नंबर 1 वाकवा में 81 साल के 81 years old श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े नौ बजे इनके घर रिजर्वर रोड उली रोड नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: RM2

वेल गाइस, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 4:08 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, और गिनीशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लास तो होना चाहिए सभी के सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RMT रेडियो मस्ती। एंड आई रियली होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। इट्स वेडनेसडे 8th ऑफ जुलाई 2026। टू दोस सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, वेलकम ऑन बोर्ड एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। द एंटायर शो इज डेडिकेटेड टू यू माय डियर। एंड चलिए जी, टू दोस जो अभी काम पे हैं, काम से निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, तैयारी में है निकलने के लिए, सो जस्ट गेट रेडी टू हिट द रोड विद सम गुड गुड गाने। ऑफ कोर्स आई हैव गॉट यू द बेस्ट म्यूजिक सिलेक्शंस फॉर दिस आफ्टरनून टू मेक योर आफ्टरनून मच मोर शाइनियर एंड ब्राइटर। तो चलिए जी, साथ साथ में हम आपको लेके जाएंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में, एंड एज वेल विल बी अपडेटिंग यू अबाउट द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, एंजॉय द राइड। एंड गिनीशा इज हियर ऑन बोर्ड साथ देने के लिए। सो बकल अप, अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल ट्रिप।

पीछे छोड़ दीजिए और जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑन आरएम2 रेडियो मसी. और आपको तो पता है जब भी हम रफ्तार वाइब्स में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं. I've got a cadeau for you. Yes, I've got you a gift. यानी कि अगर आप हमारे साथ अभी पार्टिसिपेट करते हैं, यू पार्टिसिपेट इन द गेम, यू कैन विन अ टिकट टू बी हियर एट द कॉन्सर्ट टू वॉच लाइव अभिजीत, जो बहुत ही जल्द मॉरिशस आने वाले हैं. सो यू कैन विन अ एंट्री टिकट वर्थ 850 रुपीज. यस माय डियर लवली लिसनर्स, आप एमबीसी के साथ खेल सकते हैं. यू कैन विन दिस टिकट राइट नाउ, स्टैंड अ चांस टू विन द टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टूर फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य. सो लाइव इन कॉन्सर्ट इज गोना बी इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 25th जुलाई 2026 शाम के 7:30 बजे से लेकर एट SVICC एट पाय. हम तो कहेंगे यू जस्ट हैव टू स्टेप इन टू द वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिलीव दोज अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड्स गोल्डन एरा. आप एंजॉय कर पाएंगे such a beautiful evening of timeless melodies, legendary hits and pure magic. और जैसे कि हम बोलते हैं ना, musical magic. So tickets start as from 850 rupees and they are available at mouticket.mu and Réseau Outaillu. So don't miss this unforgettable concept experience. और अगर ticket के लिए reservation के लिए phone करना है, so you have a hotline number 466-9999, 466-9999. और फिलहाल के लिए पूछेंगे एक सवाल बहुत ही आसान. आपको अपना लक जो है ना ट्राई करना है. सो ट्राई योर लक, यू नेवर नो, अगर आज का लक आपका साथ दे तो यू कैन बी माय लकी विनर एंड विन अ टिकट टू वॉच अभिजीत लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस. हम आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गाना. यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी. दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी. 5499 12 94. Send me the right answer with full name and full address ke saath. Then only you're gonna be eligible to participate in the game. Full name, full address ke saath. This song is taken from which movie? Best of luck to you. 5499 12 94 per. Send me the right answer.

0: चार बज के 25 मिनट हो चुके हैं। आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली रियली एंजॉयिंग द गुड वाइब्स द गुड म्यूजिक जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मसी वेडनेसडे 8 जुलाई 2026। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वी डू कम एवरी आफ्टरनून, जैसे कि मैं आज एक निशा जाती हूँ 4 to 7 जस्ट टू मेक यू फील द गुड गुड लवली लवली वाइब्स ऑन ऑरेंज रेडियो मसी। थके हुए हो, काम से निकल चुके हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, यू फीलिंग अ बिट लो, आपकी बैटरी लो है, अरे मेरी जान नो वरीज, हमारे सुपर हिट ट्रैक्स ना करेंगे आपका मूड एकदम रिचार्ज। घर पहुंचने तक सिर्फ और सिर्फ गुड म्यूजिक, गुड वाइब्स और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो चलिए जी, ट्रैफिक जाम है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, म्यूजिक फुल ऑन, मूड फुल पावर, स्टे ट्यून फॉर बैक टू बैक हिट्स स्पेशली आपके लिए ऑन ऑरेंज रेडियो मसी। और फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू अनाउंस आज का लकी विनर। जी हाँ दोस्तों, हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल, जहां पर सही जवाब देने पर यू कैन विन अ टिकट टू वॉच लाइव इन कॉन्सर्ट अभिजीत, यस अभिजीत भट्टाचार्य ऑन सैटरडे जो है 25 जुलाई 2026 शाम के 7:30 बजे एट SVICC अटपा। और हमने पूछा था ये सवाल, ये गाना हमने सुनाया था आपको, और हमने पूछा था कि ये जो गाना है कौन से मूवी से लिया गया है। I've got so many right answers. Thank you so much to all those जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आज का एक ही लकी विनर है माय डियर एंड लवली पीपल। जी हाँ, अभी तो लकी ड्रॉ हमने कर लिया है, किसका नंबर निकल आया है तो चलिए साथ में देखते हैं। और आज का लकी विनर है करुणा जी, शीज करुणा जो है फ्रॉम बोनाको। सो करुणा गुलजार, कंग्रेचुलेशन टू यू, यू आर द लकी विनर। बिल्कुल जी, कंग्रेचुलेशन टू यू मिसेस करुणा जी, एंड यू आर आज का लकी विनर, यू विनिंग अ टिकट टू वॉच अभिजीत लाइव इन कॉन्सर्ट। सो टिकट सेल्स फ्रॉम 850 रुपीज एंड दे आर अवेलेबल एट mticket.mu। बाकी जो लोग खरीदना चाहेंगे इवन एट रेजो होता यू, एंड डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस। रिजर्वेशन के लिए कॉल ऑन हॉटलाइन 466-9999। जी हाँ दोस्तों, यू कैन गेट योर टिकट्स राइट नाउ राइट अवे। तो चलिए जी, कंग्रेचुलेशन टू यू हमारे प्यारे करुणा जी, एंड someone is going to call you from the embassy here to let you know how you're going to grab your tickets. So stay tuned and stay connected, and thank you so much to all those jinhone aaj participate kiya hai.
1: RM2 Radio Masti.

बिल्कुल जी, अपने मूड को कर लीजिए टिप टॉप और सुनते रहना हमारे नंबर वन रेडियो स्टेशन यानी कि और एंटी रेडियो मैसेज। हाँ दोस्तों, आपको तो पता है एक्साइटमेंट पे हमने तो बता दिया कि कौन है आज का लकी विनर, लेकिन हमने सही जवाब देना भूल गए। आज के लिए एक्चुअली द सही आंसर, द राइट आंसर इज अ टक्कर। जी हाँ, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी टक्कर। सो थैंक यू सो मच जी, साथ यू ही देते रहना। आपको द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर यू।

0: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 4:45 हो चुके हैं। एक ही इंसान है जो फिलहाल हमारे मूड को थोड़ा लिफ्ट अप कर रहे हैं इन द स्टूडियो, अवर स्पोर्ट्स गुरु इज हियर, मिस्टर अरविंद। गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून आपको। मूड वैसे सभी लोगों का, कुछ लोगों का ऑफ है, कुछ लोगों का मूड एकदम परफेक्ट, क्योंकि फुटबॉल में कोई इस टीम को सपोर्ट करता है तो कोई दूसरे टीम को। तो कल ऐसा हुआ, कुछ लोग इजिप्ट को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे। अर्जेंटीना बोले तो लियोनेल मेसी, जिसने कल साबित कर दिखाया कि मुश्किल पलों में भी ही इज लीथल, और वो अकेले एक मैच का रुख कैसे बदल सकता है। ये बात अलग है कि इजिप्ट मैच के बाद इजिप्ट के ऑफिशियल्स, इजिप्ट के खिलाड़ी, इजिप्ट के फैंस ऑफिशियल यानी रेफरी के परफॉर्मेंस को लेकर बहुत नाराज हैं, और अभी खबर है कि दे वांट ऑफिशियल्स फ्रॉम अर्जेंटीना मैच किक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। डबल स्टैंडर्ड कहा जा रहा है, लेकिन जो हो गया हो गया, यहां से कुछ बदला नहीं जा सकता। अनलेस डोनाल्ड ट्रंप फोन करके कुछ बोले तो बहुत बदल सकता है,
0: एनी टाइम कुछ भी हो सकता है।
1: लेट्स सी। तो अब बची हैं केवल 8 टीमें, और आज लकीली आज आराम का दिन है। आज
0: इतने दिनों के बाद,
1: हाँ, आज लोग आराम से सो सकते हैं, आराम से उठ सकते हैं, और कल के लिए तैयार हो सकते हैं। कल क्योंकि मैच होगा, इट्स अ मिडनाइट किक ऑफ फ्रांस और मोरक्को के बीच, द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। फिर फ्राइडे को क्वार्टर फाइनल है, दूसरा फ्राइडे को रात्रि के 11 बजे। सैटरडे को 11 जुलाई, ये इट कैन बी सैटरडे नहीं कहेंगे, संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। संडे को नहीं मंडे को कह लेते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे अर्जेंटीना को खेलना होगा एट 5 AM ऑन मंडे अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। और उसके बाद ट्यूसडे से सेमीफाइनल, वेंसडे को एक सेमीफाइनल, फिर इस सैटरडे 18 जुलाई को थर्ड प्लेस, संडे 19 जुलाई द ग्रैंड फिनाले। सो इन 8 टीमों में से फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इनमें से जो टीम 3 मैच जीत लेगी दे विल बिकम वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि अभी क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है एंड द बिग फाइनल। तो लेट्स वेट, कल से सीरियस मामला शुरू हो जाएगा, और जो कुछ हो गया उसको पीछे छोड़ेंगे। लेकिन वाज इट अनयूजुअल या प्रेडिक्टेबल, यूरोप की काफी टीमें हैं इसमें, कितने हैं, स्पेन है इसमें, जर्मनी तो चला गया, तो अभी बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, 6 टीमें फ्रॉम यूरोप। अर्जेंटीना है अभी साउथ अमेरिका से, और मोरक्को फ्रॉम अफ्रीका। सो यूरोपियन साइड काफी डोमिनेट कर रहे हैं इसमें, 6 out of 8। तो इसमें से फ्रांस, मोरक्को यानी एक तो जाएगा ही यूरोप का या अफ्रीका का, और अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड यहां पर भी, हु नोज, वी कैन हैव एन ऑल यूरोपियन मामला आगे चलकर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे बहुत लोग कल मैच जिन्होंने देखा, दे सो लियोनेल मेसी क्राइंग,
0: एग्जैक्टली
1: क्राइंग। तो मेरा बेटा जो है वो भी फुटबॉल शौकीन है, उसने कहा, पापा जब ब्राजील की हार हो रही थी तो उसके खिलाड़ी रो रहे थे, ठीक, जब और किसकी हार हुई अभी हाल ही में, रोनाल्डो रो रहा था, मेसी जीत गया
0: फिर भी
1: रो रहा है,
0: क्यों, खुशी की आंसू।
1: बहुत लोग यही कह रहे हैं, लेकिन आई सो समथिंग डिफरेंट, tears of relief, क्योंकि उसके कंधे में बहुत कुछ है, he's carrying a whole nation,
0: yeah, and the pressure was exactly on his shoulder.
1: Can you imagine, 2-0 से हार हो रही है, you have 11 minutes to do something.
0: लेकिन उसने magic, जैसे जो बोलते हैं ना, it was a miracle, like you know, वाकई में, and even yesterday I was sitting and watching the match, भाई, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार I had my fingers crossed, जैसे वो बच्चे नहीं होते हैं कि TV देख रहे हैं कि यार please कुछ तो हो जाए, and finally it happened.
1: It was a bit hard on Egypt, कह सकते हैं, because अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के खिलाफ आकर 2 गोल स्कोर करना,
0: और वो भी पहले
1: अर्जेंटीना की टीम काफी असमंजस में आ गई थी वहां पर, लेकिन सब्स्टिट्यूशन, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। गेम इस तरह से होता है, अगर एक टीम अच्छी तरह से नहीं खेल रही है शुरू में हमने देखा मेसी और अर्जेंटीना को छोटे छोटे पासेस, यू नो, छोटे छोटे पासेस, एंड ये नहीं चल रहा था क्योंकि जो इजिप्ट के डिफेंडर थे दे कुड इजीली इंटरवीन. जब सब्स्टिट्यूशन हुआ तो खिलाड़ियों को वाइड भेजा गया, दैट इज करीब मत रहो. अगर पहला गोल देखे, लेट्स सी द फर्स्ट गोल, हाँ, लियोनेल मेसी के क्रॉस पर लॉन्ग क्रॉस, तब जाकर हेडर से एक गोल बनता है. ओके, दिस वाज द फर्स्ट वन, रोमेरो का मेरे ख्याल से. सेकंड एक्शन ऐसे ही दूर से एक आया, गोलकीपर ने निकाला, ऐसे लगा मेसी गोल. एंड द थर्ड गोल वाज टिपिकल ऑफ व्हाट द सब्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑफ, ए काउंटर अटैक. ये बात अलग है कि इस काउंटर अटैक से पहले कह रहे हैं कि मोहम्मद सलाह पर फाउल हुआ, एक्चुअली लियोनेल मेसी डिड टच हिम. ओके, डिड टच हिम. और ऐसे में जब काउंटर अटैक, लुतारो मार्टिनेज का क्रॉस और इधर एंजो फर्नांडेज द किलर ब्लू, एंड इट वाज द किलर ब्लू क्योंकि वहां से जैसे इजिप्ट नहीं उठ पाया, जैसे कहते हैं ना कि फरफराने का मौका नहीं मिला.
0: बिल्कुल, जब उनको लगा ना कि जो जो उनका शेर है जाग गया ना, तो बस वहीं पे खेल खत्म हो गई उनकी.
1: और आफ्टर 11 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम लियोनेल मेसी वाज नॉट सेलिब्रेटिंग, अकेले जाकर ही वाज लाइक अभी कहां से बचा मैं,
0: मतलब मैंने कर दिखाया.
1: नहीं नहीं, कर दिखाया तो करता है, लेकिन कहां से बचा मैं अभी.
0: बिल्कुल,
1: एंड दिस वाज रियली टिपिकल है, ग्रेट मैच.
0: ये होता है किस्मत का खेल.
1: हाँ, और ये है वो वर्ल्ड कप का जादू जो चार साल में आता है.
0: I remember the first day you told me ना कि यहाँ पे second में ये किस्मत बदल जाती है.
1: अब Switzerland को देखो, Switzerland भी qualify हैं for the final. They are playing a very typical European football. कल 0-0 penalty में they took their luck. और उसमें खिलाड़ी हैं जोआना मनजाम्बी, वो अभी टॉप स्कोरर हैं स्विट्जरलैंड का. कल उसने गोल स्कोर नहीं किया, लेकिन उसको काफी क्लब ढूंढ रहे हैं. 20 साल का है जोआना मनजाम्बी. और इंग्लैंड से काफी टीमें, खासतौर पर न्यूकासल यूनाइटेड ने उसके लिए भेजा है प्रस्ताव. ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर एवरी कोच वॉन्ट्स. कैसा है वो ये आगे चलकर पता चलेगा. और कोच ने कहा कि आई एम कन्विंस्ड ही विल मेक अ ग्रेट मूव. जाएगा तो जाएगा कहाँ, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा. विल टॉक अबाउट टेनिस. विंबलडन ओपन रीचिंग अ वेरी सीरियस स्टेज. और नोवाक जोकोविच क्या कहें, जैसे जैसे ओल्ड होता जा रहा है वैसे वैसे और खतरनाक होता जा रहा है. कल उसकी जीत हुई और वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचा. आज बाकी क्वार्टर फाइनल मैच अभी खेले जा रहे हैं. कोस्ट्रिक अगेंस्ट पाउलिनी, फर्स्ट सेट 2-2 है अभी. थोड़ी देर बाद मैन सिंगल क्वार्टर फाइनल को बोली अगेंस्ट फेरी. फिर लड़कियों का क्वार्टर फाइनल फर्स्ट सेट नुस्कोवा जीत रही है मेरटेंस के खिलाफ. और क्वार्टर फाइनल है फ्रिट्स और विरेव. ये दोनों मैच शुरू कर चुके थे कुछ दिन पहले, लेकिन मैच को बीच में रोका गया था. कल डबल्स होंगे और फ्राइडे को पहला सेमीफाइनल ये है सीना और जोकोविच के बीच. तो एक जनरेशन अभी वर्ल्ड नंबर वन सीना एंड जोकोविच कितने सालों तक नंबर वन रहा है वो कल आमने सामने होंगे. क्रिकेट में इट्स नॉट गोइंग वेल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. इंडिया की T20 टीम की शर्मनाक दर्दनाक हार हुई कल. कैन यू इमेजिन, दे लॉस्ट बाय 125 रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड. इंग्लैंड की टीम, इंडिया की टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है, 76 में ऑल आउट हो गए. और इस मैच में कोई भी 20 तक नहीं आ पाया. क्या है स्कोरबोर्ड चेक कर लेते हैं इसमें. आई वाज चेकिंग दैट एंड सरप्राइज्ड एक्चुअली है, सरप्राइज क्योंकि इंडिया की टीम के लिए विकेट तो ले पाए प्रिंस यादव, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा आउट हुआ 10 रन बनाकर, वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ 13 रन बनाकर. उसके बाद 13 को कोई पार ही नहीं कर पाया. सो द होल टीम फ्लैटेंड कह सकते हैं. तो अब देखना है आगे क्या होगा. What else? अभी मैच जो है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच मैच ड्रॉ गया और बाकी मैच खेले जाएंगे, तो इन पर आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे. सो हैव यू रेस्ट रिलीफ आज, फिर कल, फिर विल बी हैविंग द क्वार्टर फाइनल में यू कांट से कौन जीतेगा कौन हारेगा, इट्स एनीथिंग कैन हैपन. और फुटबॉल में जैसे कहते हैं अनसर्टेनिटी फुटबॉल के डिक्शनरी में है, इम्पॉसिबल नहीं है.
0: बिल्कुल.

बिल्कुल, अगर आप कहें तो हम तो जान देने के लिए तैयार हैं जी, हम तो आ जाते हैं वैसे ही साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। 5:12 हो चुके हैं एंड वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। सो ऑफिस का दिन फाइनली रैप अप हो गया है और अब शुरू हो रहा है आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, घर की तरफ एक म्यूजिकल जर्नी। बिल्कुल जी, चाहे आप स्टेयरिंग व्हील के पीछे हो, बस में विंडो सीट पे बैठे हो, या आप एंजॉय कर रहे हो कैब में, ट्रैफिक फेस कर रहे हो, या टेंशन को थोड़ा साइड में बस रख दीजिए। हम तो बस तैना हमेशा कहते हैं कि हमेशा जब भी काम से निकल के घर की तरफ आप जा रहे हो, जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड और सोचेगा ज़रूर कि घर जा रहे हैं, you're going to spend some good and quality time अपनों के साथ। अगर हो सकते हैं काम से किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, then only हम भी बोलते हैं कि just enjoy the max always। तो चलिए जी, क्योंकि अगले कुछ टाइम के लिए हम सिर्फ back to back hits जो गाने होते हैं आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, feel good vibes और non-stop entertainment आपके लिए हमेशा साथ रहेगा। सो हम तो बस हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, drive safely, smile करते रहे और stay locked right here because the music just keeps getting better and better यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए और बस यूं ही साथ देते रहना और खूबसूरत गानों का आप मज़ा लेते जाना। और वैसे ही आज का सफ़र किस गाने के नाम आप डेडिकेट करना चाहेंगे, मैसेज भेजिए। डेडिकेशंस जो है आप भेज सकते हैं, एंजॉय करो आफ्टरनून ड्राइव विद द हॉटेस्ट हिट्स, वी आर प्लेइंग योर फेवरेट्स ऑन 5499-1294 पर। आप अगला गाना डेडिकेट कर सकते हैं अपनों के नाम। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मेक इन शाउन रेडियो। मस्ती

बिल्कुल जी, यही तो हम करने आए हैं, खुशियां बांटने। और आई नो कि आप लोग जब भी हमें सुनते हैं तो आप खुशियां बतौर ही लेते हैं, क्योंकि लेकर रहते हैं कुछ ऐसे ही आपके फेवरेट गाने। जी हाँ दोस्तों, वैसे काम की ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, सब कुछ अब कल के लिए छोड़ दीजिए। अब वक्त है सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। वेलकम टू आवर आफ्टरनून जो ड्राइव शो होते हैं, जहां हर गाना आपके सफर को बना देते हैं और भी एंजॉयबल। तो चाहे डेस्टिनेशन घर हो या कहीं और, हम लेकर आए हैं बिगेस्ट हिट्स, फेवरेट आर्टिस्ट और वो म्यूजिक जो आपको गाने पर हम मजबूर कर ही देते हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स, ड्राइव सेफली एंड एंजॉय द राइड, बिकॉज गुड म्यूजिक मेक्स योर जर्नी अ बेटर। और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट योर डेडिकेशन एज वेल माय डियर। एंड अगला गाना जो है ड्राइवर ओहाजेब के लिए, जो रिजवी से मेहबू की तरफ जो है जा रहे हैं, विद ऑल द पैसेंजर्स एज वेल। Hey, nice music on our interview radio. Must see Yale Sham. The next one goes out to you, and I just wanted to hear the next one for Pranav Sichun. Rivière Durand Park Arena Valence. So it's his birthday today. Happy birthday to you, and best wishes from Mama Sati, Papa Akshay. Yeah, आपके जो भाई हैं उजेश्वीन सिचुन and सारे परिवार की तरफ से ही जो रिवière Durand Park के रहने वाले हैं, आपको wish कर रही हैं lots of love. Hey, Abdul Ji, Sarah Banu Ji, आपको भी good afternoon. The next one goes out to you, and hey, best. रेडियो स्टेशन के ऊपर आप ट्यून हैं, सो लेट्स लेट योर वरीज फेड अवे विद एवरी सॉन्ग एंड एवरी बीट। रेडियो मस्ती कांट बी बीटन, फ्रॉम कुमार देवी चैन फ्रॉम बेहबिया, दैट्स अ स्वीट ब्रो। एंड हस्बैंड अर्शद के लिए ये अगला गाना रिबिका की तरफ से, जस्ट टू लेट यू नो दैट शी रियली रियली लव्स यू।

0: R&2 रेडियो मस्ती
1: खाना के खन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: आशा भोसले, आदित्य नारायण एंड ऋचा शर्मा की आवाजों में सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी टाल, जो 1999 में रिलीज हुई थी, ब्रिंगिंग बैक सम लवली सुवेनियर्स फॉर यू इन योर रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती.
1: Set your day, every single day, best mix of music, radio musti sunte rahe. Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
0: बिल्कुल जी, फैशन टिप्स हम एवरी आफ्टरनून लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. और जैसे कि आपको पता है कि आजकल तो शादियों का सीजन है, सो विंटर में साड़ी पहनना और भी स्टाइलिश भी लगना है, वो कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल माय डियर, इट्स अ सिंपल ट्रिक, याद रखे, लेयर इट स्मार्ट, यानी कि साड़ी के साथ फिटेड टर्टल नेक जो ब्लाउज है या फुल स्लीव ब्लाउज ट्राई कीजिए, ऊपर से एक शिक ब्लेजर या लॉन्ग कोट ऐड कर सकते हो, वार्म भी लगेगा और फैशन ऑन पॉइंट. सो एक ब्यूटीफुल पश्मीना या एम्ब्रॉयडर्ड शॉल जो है, आप सिर्फ थन से ही नहीं बचाओगे बल्कि आपकी सारी लुक को भी इंस्टेंटली एलिगेंट बना देता है. सो यू कैन यूज दैट पश्मीना शॉल. सो शॉल को कैजुअली शोल्डर पर ड्रेप कीजिए या स्टाइलिश बेल्ट के साथ किंच कर लीजिए और मॉडर्न लुक क्रिएट कर लीजिए. इट्स गोना लुक वेरी वेरी नाइस. या सिंपल है, विंटर फैशन का गोल्डन रूल है वेल्वेट व्हिच नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल. सो वेल्वेट जो ब्लाउज है आप या वेल्वेट साड़ी बॉर्डर आपके आउटफिट को रॉयल टच देता है. सो रिच कलर्स जैसे कि मरून, एमरल्ड ग्रीन, नेवी ब्लू या वाइट विंटर के लिए भी परफेक्ट चॉइसेस हो सकते हैं. जी हाँ, साड़ी के साथ एंकल बूट्स यानी हाई बूट्स भी रॉक कीजिए क्योंकि आजकल यही फैशन में है. और जो लेटेस्ट लेटेस्ट फैशन शोज हम देखते हैं ना इंडिया से, तो आजकल तो साड़ीज के नीचे बूट्स भी यूज़ किया जा रहा है. सो ये लुक सिर्फ फैशनेबल भी नहीं बल्कि विंटर में कंफर्टेबल भी रहेगा. परफेक्ट फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेंड. सो बस स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज फॉर योर लेटेस्ट फैशन टिप्स जो है, जो हम रोज लेकर आते हैं पावर्ड बाय हमारे जो अलकोरी फैशन है.
1: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
2: RM2 Radio Mastery.

To all our dear and lovely listeners जो अभी काम पे हैं, I just want to wish all of you bon courage, my dear. I know, मुझे पता है कि अभी आपका मन कर रहा है ऐसे ठंडी ठंडी मौसम में या ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो just want to sit back home and have some lovely time. And well, I know, but still, अगर काम करना है तो करना है और हम भी तो काम कर रहे हैं ना. अभी आप लोगों का साथ दे रहे हैं with this beautiful and lovely गानों का selection जो लेकर आए हैं, just to keep up your good mood a little bit, always pump up. So फिलहाल के लिए I've got the next one for लीना के लिए फ्रॉम प्लान दे रोश. एक गाना हो जाए आज आपकी एनिवर्सरी है. आई है मेरी जान आपके हस्बैंड राजीव के लिए 6 साल हो गए. सो कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड एंड योर लिटिल प्रिंसेस जिया की तरफ से. एंड हे एवरीवन, वेलकम इन माय किचन. आई है मेरी जान रेडियो मस्ती डांसिंग ऑन कुकिंग एट द सेम टाइम. आज आप बना रही हैं जिरोमो एंड वो पुआ ऐसा ही कुछ है मसाला में. एंड चलिए जी, गर्मा गर्म रोटी भी बन रही है सुया के किचन में. सो बोन अपेट इन एडवांस टू यू एंड कुराज टू यू माय डियर. राहुल चावला ही इज ड्राइविंग राइट नाउ. हे ब्रो, हाउ आर यू? आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग ट्यून. एंड जब भी आप हमें सुनते हैं आप हमेशा भेजते हैं एक प्यारा सा मैसेज. सो ड्राइव केयरफुली. और अगला गाना आपकी ब्यूटिफुल वाइफ समीरा भाभी के लिए. सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू ब्रो एंड फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ जो साथ दे रही है वाइल ड्राइविंग. So drive carefully and enjoy the good music. And we do have Lalita Ajitan jogging and listening full on volume lagakar Radio Masti. Aur kya chahiye zindagi mein? Good music and good vibes. सारे गाने रॉकिंग है गिनी. सो द नेक्स्ट वन हमारे सारे

टीचर्स के लिए एंड लवली स्टूडेंट्स के लिए ऑफ स्कूल. जो पोर्ट्री से है लव यू ऑल गाइज एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जिटन जो लव वाउचर की है. अरे मेरी जान सच लंबा मैसेज. ओके ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके फैमिली के लिए यानी कि पापा धनंजय आपकी लवली सिस्टर श्रेया शी इज एट वर्क राइट नाउ कुराज एंड वंडरफुल मामा सेठिया टा के लिए. आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम वर्क और अभी के मम्मा को हम हेल्प कर रहे हैं गर्म गर्म फराटा बनाने के लिए. नथिंग बीट्स हॉट होम मेड फराटा. बिल्कुल जी रेनी डे है और ऐसे ही होना चाहिए. सो लव यू सो मच माई डियर एंड द स्पेशल डेडिकेशन दैट्स गोइंग टू एवरीवन फ्रॉम केके बो कुराज टू यू एवरीवन. सो अगला गाना जो है दिख सी दिख सीटा के लिए नीरव एंड नीरवी के लिए एंड थैंक यू सो मच एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आशले की तरफ से. एंड वी हैव न्यू ग्रोव से ब्रदर इन लॉ मनोज गोपी चैन ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. सो कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. विशिंग यू गुड हेल्थ फ्रॉम करुणा गोपी चैन एंड फैमिली एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज. हे हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस. एंजॉय टू द मैक्स इट्स योर डे. और फिलहाल के लिए कुणाल गंजावाला एंड शान की आवाजों में नामा कूल. नाउ यू हैव टू बी कूल सो जस्ट बी कूल विद मी ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. यू आर लिसनिंग टू Ganesha right now.

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला हमेशा ही चलता ही रहेगा कि और हमारे बीच में ऑन रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए हम भरेंगे 6 बजे की समाचारों की ओर और उसके बाद आई'ल बी बैक विद सम गुड म्यूजिक, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 PM।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा फीसद की बढ़ोतरी। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां।

0: लगाई है। फिलहाल मुर्शिद के कैद खानों का जायजा लिया जा रहा है। ड्रग्स और जुर्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दफ्तर UNODC एक जायजा ले रहा है। प्रोफेसर कोलिंस ओडुटे इस हफ्ते मुर्शिद में हैं ताकि वो एक ऑब्जर्वेशन मिशन कर सकें और कैद खानों में सुधार को लेकर सिफारिशें दे सकें। पहली जून से कैनाल प्लस के ग्राहकों को TFM ग्रुप के चैनलों का एक्सेस नहीं है, यानी 5 चैनल कम है। इस फैसले से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। ग्रेट ब्रिटेन में नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक एक क्रिप्टो करेंसी बिलियनेयर यानी नाइजल फराज को 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का तोहफा दिया। बैंकरों ने NCA को ये जानकारी दी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का शक। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स की आज रात से शुरुआत। नमस्कार, आदाब। इस बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। इस हालत से कमजोर समझौते को लेकर मध्य पूर्व की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने का डर मंडला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। इन दिनों मुर्शिद के कैदखानों का जायजा लिया जा रहा है। ड्रग्स और जुर्मों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दफ्तर UNODC एक जायजा ले रहा है। प्रोफेसर कोलिंस ओडुटे इस हफ्ते मुर्शिद में हैं ताकि वो एक ऑब्जर्वेशन मिशन कर सकें और कैदखानों में सुधार को लेकर सिफारिशें दे सकें। मुर्शिद UNODC के 9 गिने देशों में शामिल हैं जो कैदियों के साथ सलूक और कैदखानों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करें। इस मिशन के सिलसिले में प्रोफेसर कोलिंस ओडुटे ने कई कैदखानों का दौरा किया। MBC की एक टीम भी बोबासा के न्यू विंग प्रिजन में उनके साथ गई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में खासतौर पर दिमागी सेहत के सिलसिले में अक्सर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बर्नआउट की बातें होती हैं। इसके चलते सार्वजनिक, निजी, शैक्षिक, धार्मिक और स्वास्थ्य क्षेत्र एक साथ आकर हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट हाउस खेजवी में आज इस पहल की शुरुआत की गई। कल रात राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी गईं। इस विधेयक का मकसद शिकार लोगों को की बेहतर हिफाजत करने के साथ साथ हिंसाओं की किस्मों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। इनमें आर्थिक हिंसाएं, मानसिक और जज्बाती हिंसाएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा सजाओं को और मजबूत किया जाएगा और रोकथाम के कदमों को भी ठोस किया जाएगा। कल राष्ट्रीय सभा में ही प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछा गया जो पाई में स्मार्ट सिटी को लेकर के संदर्भ में रहा और उन्होंने ये कहा कि फंड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया था।
1: दमन लिपाई स्मार्ट सिटी परियोजना के एक प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के समर्थन का उल्लेख किया, खासकर 97 बीघा जमीन पर इसके विकास को लेकर। उन्होंने ये भी बताया कि चीनी प्रमोटर ने निर्धारित फंड का केवल एक हिस्सा ही लगाया है, जिससे गंभीर चिंता हो चली है। प्रधानमंत्री ने कहा,
2: मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर, दिस इज अनदर स्कैंडलस प्रोजेक्ट अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड इट हैज सिविल डायमेंशंस। आई एम इन्फॉर्मड बाय द स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन।
1: ये एक स्कैंडलस परियोजना है पूर्व सरकार के शासन में, और इसके कई आयाम हैं। स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से सूचित किया गया है कि उसने भारी मूल्य वाले उन जमीनों को लीज पर नहीं दिया है, बल्कि उन्हें निश्चित रूप से ट्रांसफर किया है ये हाई इमारतों के साथ। ये संपत्तियां अब से ये हाई की हैं, जिनका प्रमुख शेयर होल्डर ये हाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड है। अतः ये प्राइम लैंड स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नहीं, उन्हें एक विदेशी की ओर से संचालित एक कंपनी को ट्रांसफर किया गया है, जिसने अपने वचनों का पालन नहीं किया और इस पर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच चल रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रशासन की ओर से कई चिंताजनक मुद्दों का पता चला है। स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड पर ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया नहीं चलाई गई और शेयरहोल्डरों के बीच संधि पर हस्ताक्षर से पहले एम ली हाई पर भी ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात, ये हाई के कायम होने पर ये तय किया गया था कि सभी चेक्स पर एम ली हाई और स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे। प्रारंभ में मिसिस बनुमती वीरासामी ये पद संभाल रही थी, जिसके बाद एम अनुप नीलांबर इस पद पर आए। फिर भी 2018 के मार्च महीने में ये हाई की प्रशासनिक परिषद ने एक प्रमुख बदलाव किया। एम ली हाई खुद केवल 10 मिलियन रुपए के सभी चेक्स पर हस्ताक्षर कर सकते थे। इससे ज्यादा वाली रकम के लिए एम ली हाई और अनुप नीलांबर के हस्ताक्षर चाहिए थे। इस असाधारण मेकानिज्म की बदौलत एम ली हाई ने ये हाई अकाउंट से भारी रकम में पैसे निकाले। इस तरह उन्होंने कुल 107 मिलियन रुपए निकाले, जिनमें से मार्च और मई 2022 के बीच 3 महीनों के अंतराल में हर एक के लिए 9,431,240 रुपए के 10 विथड्रॉवल्स किए। 31 जुलाई 2019 में लिहाई और अनुप नीलांबर ने एक रेजोल्यूशन पारित किया, जिसके तहत लिहाई को मासिक रूप से 5 लाख रुपए के वेतन पर सहमति बनी। इनकम टैक्स खुद ये हाई ने चुकाए, उन्होंने नहीं। 2026 के फरवरी महीने से स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नए मैनेजमेंट ने इस प्रक्रिया को समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड को इस परियोजना में कई खामियां दिखी हैं, जैसे देरी, प्रशासन की समस्याएं और फाइनेंसिंग के साथ जुड़ी कठिनाइयां। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और FCC की जांच के चलते एक स्मार्ट सिटी प्रमाण पत्र को रद्द करने का विचार किया जा रहा है।
2: Mr. Deputy Speaker, I'm further informed by the State Investment Corporation.
1: ऐसी भी जानकारी है कि चीन के 2 नागरिकों ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में आरोप लगाए हैं। ये बताया गया कि ये हाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के शेयर होल्डिंग में ली हाई की वित्तीय भागीदारी के संबंध में विवाद पाया जाता है। दोनों ही नागरिकों ने ये भी बताया कि एम ली हाई अवैध पैसे को वैध बनाए जाने में संलग्न हो सकती हैं, जिसके लिए FCC ने उन पर एक अस्थायी आरोप लगाए हैं। FCC की तरफ से की गई मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ली हाई के बैंक अकाउंट को लेकर फ्रीज करने के आदेश जारी किए और साथ में ये हाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सभी शेयर्स को भी। 2026 के मई महीने में स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने FCC में ली हाई के खिलाफ फंड की हेराफेरी की भी औपचारिक शिकायत दर्ज की। अभी FCC अनुप नीलांबर और ली हाई से संबंधित तथाकथित हेराफेरी के मामले की जांच कर रहा है। बता दें कि एम नीलांबर को बाद में पूर्व सरकार की ओर से स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नामजद किया गया। ये एक वृहद मामला है, जिसमें भारी सार्वजनिक रकम, राष्ट्र की अहम जमीनें, एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल, गलत गंभीर संचालन, ये हाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड शेयर होल्डर की बेईमानी और निवेश की हानि संलग्न है। मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि फाइनेंस एक्ट 2022 की बदौलत कुछ अवधि के लिए इसे नियमबद्ध करा पाया। इस कदम का मकसद है उन महिलाओं को बेवा का पेंशन प्राप्त कराना जो इसके हकदार है। प्रधानमंत्री ने कहा,
2: आई एम इनफॉर्म्ड बाय द मुस्लिम फैमिली काउंसिल दैट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज
1: मुस्लिम फैमिली काउंसिल की ओर से सूचित किया गया है कि रजिस्ट्रेशन कार्रवाई के दौरान 368 मांगे प्राप्त हुई। इनमें से 322 को मंजूरी दी गई और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दिए गए। 109 जीवित महिलाओं से संबंधित रही 46 मांगे इनकार की गई, क्योंकि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। 31 जीवित महिलाओं के हैं। ये भी जानकारी दी गई कि रजिस्ट्रेशन की अवधि के ढलने के बाद 31 दिसंबर 2022 तक 38 अतिरिक्त मांगे की गई। कानूनी मोहलत ढल जाने के बाद इन मांगों पर काम नहीं हो पाया। सभा को ये भी बताना चाहेंगे कि मुस्लिम रिलीजियंस मैरिज की रजिस्ट्रेशन नई अवधि बढ़ाने की संभावना पर अभी काम चल रहा है।
2: The issue of granting a further extension from the deadline for the registration of Muslim religious marriages is presently under consideration.
1: MoCloud एप्लीकेशन के जरिए उपलब्ध सिविल स्टेटस के कागजात के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ संस्थाओं की ओर से QR कोड द्वारा दी जा रही प्रतियां स्वीकार्य नहीं, जिनमें बैंक, नोटरी अपोस्टिल सेक्शन शामिल है। उन्हें मान्यता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे की जांच की जा रही है।
0: पहली जून से कैनल प्लस के ग्राहकों को टीएफएम ग्रुप के चैनल

0: चैनलों का एक्सेस नहीं है, यानी 5 चैनल कम है। इस फैसले से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। पहली बार नहीं है कि ऑडियोविजुअल क्षेत्र के 2 बड़े ऑपरेटरों के बीच इस तरह का झगड़ा है। सन 2018 से बातचीत में राय अलग अलग रही है, लेकिन समझौते बनते गए। एक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना और बच्चों के भविष्य में और ज्यादा निवेश करना, ये जोश शॉल बुनियाद का मकसद है, जिसने आज अपनी फोटोवोल्टाइक परियोजना की शुरुआत की। उद्देश्य संस्था की गतिविधियों के खर्चों को बहुत हद तक घटाना है और सामाजिक समर्थन को मजबूत करना है। एमबीसी प्ले अभियान के संदर्भ में ORM-1 और ORM-2 पर आयोजित मुकाबलों के 2 विजेताओं को हेलीकॉप्टर में यात्रा करने का मौका मिला। शालिनी बिसंबर और अश्विन बालू ने हेलीकॉप्टर में पूरे टापू का दौरा किया। उन्हें सी बीच क्लब और बेलोम्ब नेचर रिजर्व की तरफ से भी तोहफे मिले हैं। एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने यात्रा को मुमकिन बनाने में मदद दी है। हम आपको बता रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आई है। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। इस हालत से कमज़ोर समझौते को लेकर मध्य पूर्व की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने का डर मंडला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। अब्दुल बुला की रजनी बेकर।
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते हिंसा की फिर से हुई शुरुआत। पिछले महीने तय युद्ध विराम ज्यादा समय तक टिका नहीं, असल में हमले और जवाबी हमले के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है। हिंसा के बढ़ने से संबंधित मुद्दे यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग, जहां से विश्व का करीब 20% पेट्रोल और नेचुरल लिक्विफाइड गैस होकर गुजरता है। वाशिंगटन के अनुसार 3 व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाया गया। इसके लिए तेहरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि उसने जवाब में ईरान में 80 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद जवाबी हमला करते हुए ईरान ने ऐलान किया कि उसने कुवैत और बहरीन में कई अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया। मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। खाड़ी के इन 2 देशों में सायरन की आवाज़ें चल पड़ी। इसके अलावा धमाके भी हुए ईरान के बंदरगाह बुशहर में, जो कि अहम पेट्रोल संयंत्रों के बहुत नज़दीक है। अंकारा से नेटो शिखर बैठक में भाग लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ लड़ाई बंदी अब समाप्त हो गई। फिर भी उन्होंने संकेत दिया कि वार्ता फिर से जारी रखने के लिए समझौता बातचीत की जा सकती है। हिंसा के फिर से भड़क उठने पर मंडियों में हलचल सी मच गई। पेट्रोल के दाम में 5% की बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट के लिए प्रति बैरल की कीमत $78 तक पहुंची। वैश्विक सप्लाई में रुकावटों की चिंता के चलते ऐसी स्थिति आन बढ़ी। कूटनीतिक स्तर पर कई देशों ने संयम की मांग की, जैसे कुवैत, कतर और चीन, जिन्होंने हिंसा रोकने की मांग की। नई सिरे से हिंसा बढ़ने की स्थिति ऐसे वक्त पर पैदा हुई है जब पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। उधर ईरान अपने सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की विदाई में संलग्न, जिसकी मौत इसी साल हमले में हुई थी। मध्य पूर्व में व्याप्त संकट की स्थिति के बढ़ने की चिंता हो चली है।
0: चीन के केंद्र में रिकॉर्ड तोड़ बरसातों की वजह से कम 17 लोगों की मौत हुई है। 67,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। दक्षिण में सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, हजारों लोग बेघर भी बताए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक एक क्रिप्टो करेंसी बिलियनेयर ने नाइजल फराज को £5 मिलियन स्टर्लिंग का तोहफा दिया। बैंकरों ने एनसीए को ये जानकारी दी क्योंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का पहले से ही शक था। इससे रिफॉर्म यूके के नेता पर दबाव बढ़ गया है। स्थानीय स्तर पर लौटते हैं। कल रात राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी गईं। इस विधेयक का मकसद शिकार लोगों की बेहतर हिफाजत करने के साथ साथ हिंसाओं की किस्मों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। इनमें आर्थिक हिंसाएं, मानसिक और जज्बाती हिंसाएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा सजाओं को और मजबूत किया जाएगा और रोकथाम के कदमों को भी और ठोस किया जाएगा। अनिशा मदया की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: Auparavant, c'était 14 jours. Maintenant, c'est 7 jours pour l'obtention d'un protection order. Mais considérant la gravité des circonstances, parfois, c'est long. Et là, je fais un appel pour qu'il y ait un triage des cas qui sont rapportés au ministère du genre et de la famille pour les récidives et surtout, hautement sérieuses pour que ces...

0: नौ गोल करके मेसी की टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। इजिप्ट का भी जबरदस्त खेल रहा लेकिन 3-2 से उसकी हार हुई। आज स्विट्जरलैंड भी क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गया है। अरविंद मिसेसा।
1: इजिप्ट की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई लेकिन इतिहास रच के पहली बार के लिए यहां तक आ पाए और पहली बार क्वालिफाई हो सकते थे क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन इजिप्ट की टीम बहुत करीब आकर हार गई। अर्जेंटीना को जमीन आसमान एक करना पड़ा तब जाकर अर्जेंटीना की टीम आगे बढ़ पाई। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना 2-0 से पीछे थी। इब्राहिम पहला गोल स्कोर करता है 15वें मिनट पर इजिप्ट के लिए। यहां पर अर्जेंटीना के फैंस जो बहुत थे एकदम असमंजस में आ गए और इसके बाद तागलियाफिको को पेनाल्टी दी गई। मेसी पेनाल्टी बनाने में नाकाम रहा। सेकंड हाफ में इजिप्ट की टीम काउंटर अटैक पर आगे बढ़ी। जीको का गोल हासन के इस क्रॉस पर रेफरी को लगा कि इस एक्शन को शुरू होने से पहले फाउल हुआ था इसलिए ये गोल नहीं दिया गया। लेकिन दिफाओं यानी इजिप्ट की टीम फिर से वापस आती है। सलाह हासान को गेंद देता है, हासान जीको को, और जीको इस बार दूसरा गोल बनाता है 2-0। यहां से लग रहा था कि अब इजिप्ट बाजी मार जाएगी लेकिन वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के लिए रोमेरो एक गोल कम करता है मेसी के पास पर। उसके बाद मेसी इक्वलाइज करता है। यहां तक अब लग रहा था कि मैच जीत जाएगा अर्जेंटीना और अंतिम मिनट में या यू कहें इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में फर्नांडेज गोल स्कोर करता है 3-2 की जीत मेसी के लिए। ये एक कीमती जीत है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा जिसने पेनाल्टी पर कोलंबिया को हराया।
0: और आज से क्वार्टर फाइनल्स के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को 12 बजे रात को दो बार चैंपियन रही फ्रांस की टीम अफ्रीकी मुल्क मोरक्को के मुकाबले खेलेगा। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मस्कमिंस के दक्षिण पूर्व में जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी जो ज़्यादातर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में होगी और दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज दिन के दौरान घने बादल होंगे, ऊँचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा, 3.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। दूर समुंदर में ना जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 18 से 21, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:47 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। थोड़ी देर में शोक समाचार सुनिए। पायोंकू रोड मोसेल मोसेट अंतवान गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाइशी नाम जोदोआ जो इंद्रानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी बाद में उठाई जाएगी। इटली में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री विजय बहादुर जो विजय के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और

0: आमदानी रोड प्लेंदी पापा के रहने वाले थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल तीन बजे इटली में उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM रिजर्वा रोड और रोड नंबर एक वाकवा में 81 साल के 81 years old श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर रिजर्वा रोड और रोड नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मिल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

तो चलिए जी चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 6:33 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और किनिशा का प्रणाम जी. जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर अफ्तार वाइब्स विद मी किनिशा. तो चलिए जी लेट्स चेक इट आउट कि कौन कौन है जो साथ दे रहे हैं आज. ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू कृष्णी, जो है कॉम्फोको से साथ दे रही हैं. बिल्कुल जी, सब कुछ कुशल मंगल हैं और उम्मीद करते हैं इवन दैट यू आर गुड. एंड चलिए द नेक्स्ट वन जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर समवन जिसका नाम है चाया सुकोई ऑफ पेलगा सेबास्टोपोल, एंजॉयिंग वंडरफुल गाने एंड शी इज इन द किचन राइट नाउ. एंड वो बोलते हैं कि म्यूजिक हैव द पावर टू टेक अवे ऑल योर पेन सैडनेस एंड टायर्डनेस. म्यूजिक इज लाइक एन एनर्जी एंड अ बूस्टर व्हिच फ्यूल्स अप आवर सिस्टम. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है. एक गाना हो जाए आपके हस्बैंड सुबह राज के लिए, पैसेंजर्स के लिए जो बस में बहते हैं उनके, और जो आपका बेटा है श्रेयाश, बेटी शाइविया, ऑल्सो हमारे टीम के लिए, हमारे लिए. एंड मोस्टली जो सभी लोग किचन में हैं, बिजी हैं, काम से वापस आ गए हैं, और जो कुछ लोग जा रहे हैं नाइट शिफ्ट के लिए, उनको बोको आज. सो आपकी नीस रिमशा के लिए भी सुनिए, हु सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एज वेल. सो आई जस्ट वांट टू विश हर हैप्पी बर्थडे एज वेल. एक्चुअली इट वाज यस्टरडे, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. नेक्स्ट वन फॉर सम पेट फैमिली ऑफ एन एस फ्लोरों. एंड enjoying the selection gini, thank you so much. Aur ye hai ragini, thank you ragini ji, keep on enjoying the good music. Kisi ne likha hai mausam mein garam garam bima fasi kha rahe hain, chai ya pee rahe hain, aapka intezar hamesha rehta hai. Thank you so much mala ji from Solferino. And we do have the next one listening to lovely dynamic voice. Hey, thank you so much. I'm doing good radha ji from Canada, and I hope that you are doing good too. Enjoying lovely music as usual. And next one aapki family jo Canada Mauritius mein hai, sare RM2 listeners ke liye. Shweta Okum from Bonaka, the next one. Aapke husband Didu Roshan, Kilian Buburani. Ki taraf se, you just want to tell your husband that you really love him. Bhavna from Maldalbea. Next one for your husband Bhavish. And you just want to tell him that you are missing him so, so much. Oh my God. Aran Shweta Ravish Prisha Lavisha by the families. The next one goes out to you. And we do have all our lovely listeners, Joyce Fakta, Shaira Bibi, Gari Chala Rahi hai, and enjoying this good music. To chali aise thandi thandi hawa jab chalti hai, aise romantic gaane jab bajte hai na, to dil kaafi khush जाते हैं और जुमूर है काफी शायराना हो जाता है. और साथ में ऐसे मौसम में बोलते हैं कि प्यार जवां होता है. तो चलिए सोनू निगम की आवाज में, आई चूज अप दिस वन फॉर यू. सो आई चूज अप दिस वन फॉर यू. अपना मुझे तो लगा बिल्कुल सारे अजनबियों के नाम भी जो साथ दे रहे हैं, अजनबी होते हुए भी दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि कब अपना बना लेते हैं पता ही नहीं चलता है. So sit back guys, relax and enjoy this beautiful evening on our RM2 Radio Mercy with this beautiful and mesmerizing gaane. RM2 Radio.

0: क्या बात है, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। बस अगर आप भी किसी के पागल दीवाने हैं और हमारे गीतों को सुनने के बाद आपका मन थोड़ा सा बचलेगा और आपको पता है कि आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाएगा, तो दिल को बस थाम कर रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक गाने आप लोगों के लिए हम चुन चुन कर लेकर आए हैं टू मेक यू फॉल इन लव वंस अगेन। और वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ही इंसान से बार बार प्यार में पड़ना कितना स्पेशल फीलिंग होता है और कितना स्पेशल एहसास होता है जब आप उसी इंसान से बार बार प्यार का इजहार इकरार करते रहते हैं, इससे प्यार और भी बढ़ता है। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आप भी प्यार को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे विद इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है 20 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इट्स अ वंडरफुल वेंसडे इवनिंग, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। कुछ आपके मैसेजेस हम तक जरूर पहुंचाइए ऑन 549-1294। हम जरूर जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने इस वेंसडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड। और हमारे गीतों को सुनने के बाद जो भी एहसास मन में उभर कर सामने आएंगे, आप वो एहसास को कह डालिए, बयां कर दीजिए। और हम तो यही चाहते हैं कि प्यार को थोड़ा सा और बढ़ावा दें आज। एंड प्यार की बातें अगर आप करना चाहते हैं और प्यार से कोई गीत मांगना चाहते हैं, तो आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार करेंगे ऑन 4028235 पर लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। 7:07 टू ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: बरसात तो शायद काफी रीजन्स में हुए होंगे एंड अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है तो इस बारिशी मौसम में बरसाती मौसम में हमारा साथ देते रहिए क्योंकि बरसाती मौसम में जज्बात भी उभर कर सामने आ ही जाते हैं। चलिए एक कॉलर है हमारे बीच, हमारी प्यारी सी कमला जी, फूलों का गमला, हमेशा हम उनको प्यार से याद करते रहते हैं। कल टीना जी ने एक फूलों का गमला भेजा था और हमने कहा था कि ये गमला देखने के बाद हमें कमला जी की याद आ गई है और देखिए आज कमला जी ने हमें याद किया है। तो कमला जी नमस्ते आपको।
1: नमस्ते दिव्या जी,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आपका फोन तो बहुत ही रेयरली आता है अब। आई नो कि लाइफ बहुत ही बिजी है लेकिन आज आपने थोड़ा वक्त निकाल के हमें याद किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: आप कक्षता राजकुमार कैसा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और आपकी प्यारी सी छोटी सी राजकुमारी भी, मुझे पूरा यकीन है वो भी ठीक ठाक है, हमारी प्यारी सी आरोही
1: है। अभी वो खाना खा रही है तो उसने पूछा, वो सुन रही है आपको, उसने कहा कि उसने वो पूछ रही है मुझसे, तो मैंने कहा ये मौसी दिव्या है। तब वो बोला था कि हाँ चुन चुन कर गाने डाल रही है आप, वैसे ही उसने भी बोला
0: छोटी सी दादी माँ।
1: हाँ, तो मैंने बोला कि ये मौसी दिव्या है।
0: That's really sweet. चलिए हमारी तरफ से आरोही को बहुत बहुत सारा प्यार कमला जी, एंड चलिए आप हमें बताइए कि वहाँ पे मौसम कैसा है।
1: बाप, सुबह से मौसम बहुत खराब है दिव्या जी।
0: और इस बरसाती मौसम में आप अपना प्रिकॉशन तो ले रही है ना?
1: हाँ, और ठंड बहुत है ना?
0: ठंड तो बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, आप कंबल के नीचे ओढ़ कर हमारे गीतों का पूरा पूरा फायदा उठाते रहिएगा। चलिए कमला जी आप हमें बताइए अगला गाना आप किन किन के लिए डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: अगला गाना मैं अपनी खास सहेली सीता के लिए और उसकी नाती है रायान और मेरे पूरे परिवार, मेरी दिव्या, मेरी नाती अरोही, मेरे पूरे दीनू रामधनी परिवार और आप लोगों के लिए भी।
0: थैंक यू सो मच कमला जी,
1: टीम के लिए।
0: दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, धन्यवाद। आप ऑन एयर रहिए, आपसे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है?
1: ओके
0: ओके, आप लाइन पर रहिए। थैंक यू सो मच कमला जी, बाय बाय।
1: बाय।
0: चलिए यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे बीच और प्यारी सी प्रीति, हेलो जी। हेलो। हाँ जी प्रीति, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ, आप कैसे दीदी?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ लोग हमें मासी बुलाते हैं, कुछ लोग हमें दीदी बुलाते हैं, हमें ये सारे जो शब्द हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे अपना पंजा लगता है। सो चलिए प्रीति आप हमें बताइए, आपका काम खत्म हो गया है आज, आप घर वापस आ गई हैं राइट?
2: हाँ।
0: और मौसम कैसा है?
2: मौसम खराब है और बारिश हो रही है।
0: चलिए इस बरसाती मौसम में, हाँ ठंड तो बहुत बहुत है, स्पेशली बच्चों को लेकर आपको ज्यादा प्रिकॉशन जरूर लेना है। एंड चलिए प्रीति आप हमें बताइए कि आज आपने क्या बनाया है?
2: आज गोभी बनाया, गोभी।
0: आप सोच ही रही थी गोभी को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए चलिए गोभी, ये भी मेरा फेवरेट वेजिटेबल है। तो चलिए आज आप अपने गर्मा गर्म गोभी को जरूर एंजॉय करिएगा एंड हमें बताइए अगला गाना किन किन के लिए?
2: मम्मी के लिए और
0: योहान के लिए। ओके, रियली स्वीट ऑफ यू, रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच प्रीति, आपने फोन किया। हाँ जी बताइए।
2: अदना सानी का
0: कौन सा?
2: भीगी भीगी बरसात में,
0: भीगी भीगी रातों में।
2: हाँ,
0: हमें

0: पता चल गया। चलिए ये गाना जरूर आपके लिए हम बजाएंगे एंड थैंक यू सो मच प्रीति हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू, बाय
1: बाय।
0: तो ये थी हमारी प्यारी सी प्रीति जी एंड चलिए यहाँ पर लाइन पर आई गेस राजेश साहब फोन कर रही हैं तो उनको भी हम थोड़ा हेलो हाय कहते हैं। हेलो राजेश साहब।
2: हेलो, कैसे हैं जी आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप?
2: दिव्या भारती जी।
0: इतनी इज्जत मत दीजिए भाई। कहाँ दिव्या भारती और कहाँ हम।
2: नहीं जी, आप भी हैं, आप तो इतने इतनी अच्छी अच्छी बातें करके सबके दिल के दुख दूर कर देते हैं, तो आप दिव्या भारती हो गई ना।
0: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राजेश जी। चलिए आपके यहाँ मौसम कैसा है?
2: मौसम तो माय गॉड बहुत भयंकर है।
0: ओ माय गॉड वाला मौसम ही है आज। यस, आपने एकदम सही कहा है, बस बरसात चारों तरफ एंड इस बरसाती मौसम में आप किन किन के लिए गाना मांगना चाहेंगे?
2: मेरी बेटी बेटियों के लिए, मेरी नवासा नवासियों के लिए और मेरे सारे परिवार के और आपके टीम के लिए भी।
0: थैंक यू सो मच राजेश साहब, आपने हमें याद किया। कल शायद आप हमें फ़ोन कर रहे थे और कोई टेक्निकल इशू हुआ था आई गेस, हेलो हेलो बोलकर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आज आपने हमें याद किया और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राजेश जी हमें याद करने के लिए।
2: एक गीत मांगना चाहता हूँ
0: अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि आज शायद हम ओल्डीज नहीं चलाएंगे।
2: गीत है जी, सुनिए, सुनकर तो देखिए जी।
0: बताइए बताइए।
2: वो टूटे खेड़ा का फिल्म है, माना हो तुम।
0: ओ, बाला सुब्रमण्यम का,
2: बाला सुब्रमण्यम का गीत। इस मौसम में ये गीत मांगना है।
0: ओके, ये गाना जरूर आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे एंड आपके पूरे परिवार के लिए। क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि आज
2: जी,
0: हाँ जी
2: दिव्या भारती जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती
0: हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय।
2: ओके बाय।
0: चलिए ये थे हमारे प्यारे से राजेश जी और जिस तरीके से ओ माय गॉड बोलते हैं आज, इन्होंने हमारी नकल की, बाय बोलने की कोशिश की, तो चलिए ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
3: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
5: RM2.
3: Radio Musti.

0: Such a beautiful, soulful and meaningful gana. ऐसी बरसातों में आओ ना, चलिए आप किसी को याद कर रहे हैं तो हम भी बहुत ही प्यार से आपको याद कर रहे हैं और इस याद में हम एक नजराना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और इस नजराने को हासिल करने के लिए all you have to do is to play with us. Yes, एक बहुत ही खास गिफ्ट आपको मिलने वाला है. We are playing with concert Abhijit. अगर आपकी जीत होती है तो आपको मौका मिलेगा to win one entry ticket worth 850 rupees और आपको ये गोल्डन चांस मिल रहा है फॉर द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य द लेजेंडरी अभिजीत भट्टाचार्य. बहुत ही जल्द मॉरिशस में आने वाले हैं अपने स्पेशल कॉन्सर्ट के लिए. कुछ और डिटेल की ओर हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल के लिए ऑल यू हैव टू डू इज हमें ये बताना है कि अभिजीत भट्टाचार्य इज नोन टू बी द वॉइस ऑफ विच एक्टर. जैसे कि किशोरदा की आवाज़ अमिताभ बच्चन साहब के लिए बहुत ही फेमस थे एंड मुकेश साहब की आवाज़ राज कपूर साहब के लिए बहुत ही फेमस है एंड मुकेश साहब वाज नोन टू बी द वॉइस ऑफ राज कपूर साहब. और इसी तरीके से यू हैव टू टेल अस कि अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ किस एक्टर के लिए फेमस है. अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ इज नोन फॉर विच एक्टर. आपको हमें सही जवाब देना है ऑन 5499-1294 पर. आपके हम सही जवाबों का इंतज़ार कर रही है और नॉट टू फॉरगेट इस गिफ्ट को आपको पोस्ट किया जाएगा तो बाय पोस्ट अगर ये गिफ्ट आप तक पहुंच पाए तो ऐसे में यू हैव टू गिव अस योर फुल एड्रेस एंड योर फुल नेम. जिस तरीके से आपका नाम आईडी कार्ड में लिखा जाता है उसी तरीके से आपको बस ये हमें बताना है. तो चलिए यहाँ पर आपके सही जवाबों का हम इंतजार कर रही है ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: चले जी यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन. एक्चुअली ये जो वाउचर है आपको एमबीसी आकर कलेक्ट करना है. यस एमबीसी आकर कलेक्ट करना है. सो यू हैव टू टेल अस अभिजीत भट्टाचार्य इज नोन फॉर विच एक्टर्स इज नोन टू बी द वॉइस ऑफ विच एक्टर. आपके सही जवाब ऑन 5499-1294.

Well, 7:31 already and चलिए हमने सवाल पूछा था कि अभिजीत भट्टाचार्य the legendary singer is known to be the voice of which actor and यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए वैसे सही जवाब तो सब लोगों के पास तो होना ही था क्योंकि

0: इतनी मशहूर आवाज और इतना मशहूर पर्सनालिटी, कौन इन दोनों को नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि आवाज और रूह का कनेक्शन है दोनों का। और हम बात कर रहे हैं नान अददान द किंग खान। यस, शाहरुख खान इज द राइट आंसर। एक्चुअली अभिजीत भट्टाचार्य इज़ नोन टू बी द वॉइस ऑफ शाहरुख खान। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए, बट लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है विनेशा बदाई ऑफ काट्रोबोन। विनेशा, आपको मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मौका मिल रहा है टू विन वन टिकेट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे, जो होने वाला है 25 जुलाई 2026 यानी कि 25th July 2026 as from 7:30 PM at SVI CCPI. Step into a world of nostalgia and relive the unforgettable voice of that defined Bollywood's golden era. और आपको मौका मिल रहा है टू एंजॉय एन इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक। टिकट स्टार्ट आज फ्रॉम 850 रुपीज एंड और अवेलेबल एट moticket.mu एंड रेजो उतायु। एंड डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस। और रिजर्वेशन के लिए आप हॉटलाइन को फ़ोन कर सकते हैं ऑन 466-9999-466-9999. सो विनेशा बदाई ऑफ काट्रोबोन, वंस अगेन आपको मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको हम बता देते हैं कि ये जो टिकट है आपको एमबीसी आकर कलेक्ट करना है अपने आईडी कार्ड के साथ। ड्यूरिंग वीकडेज आपको आना है, सुबह के 9:30 से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच आपके पास वक्त है, तो आप वीकडेज के दौरान आ सकते हैं और अपना ये जो गिफ्ट वाउचर है कलेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन विनेशा, आपको मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: वेल चलिए मौके का फ़ायदा उठाकर यही गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे अंतेश के लिए जो कनेक्टेड हैं ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, हमेशा आर्म टू का साथ देते रहते हैं और हमेशा उनके मैसेजेस आ ही जाते हैं. तो चलिए, यू आर कुकिंग एंड एंजॉयिंग द शो, थैंक यू सो मच अंतेश. ज़रूर हमें बताना कि क्या बन रहा है और आपने क्या बनाया है किचन में. सो अंतेश, दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल दोज जो आपको मॉरिशस में जानते हैं, आपके स्वीट मामा के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए. सो दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू. एंड इस अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और ये अगला गाना हमें लेकर जाएगा इन द सेकेंड आवर ऑफ इवनिंग लाउंज. Just to stay right connected.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घड़ी मिलाते चलिए, रात्रि के 8:02 हो चुके हैं।

0: प्यार में कभी ऐसा भी होता है कि जब आसमान में चांद निकल आता है तो उस चांद को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि ये चांद तो इसका इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपको तो बस सपने चांद के बारे में ही सोच सोच कर आपका हाल बेहाल होता रहता है एंड आप इंतज़ार करते रहते हैं कि गली में आपका चांद कब निकलेगा। ऐसा होता है और प्यार में तो वो सब कुछ पॉसिबल है ही एंड कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज़ है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो प्यार में ये जो एहसास है इसको उभर कर सामने लेकर आना भी जायज़ होता है। तो चलिए आई जस्ट होप कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के बाद, हमारी इन गीतों को सुनने के बाद आपको थोड़ा और एनकरेजमेंट मिल रहा है प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। शायद मन में कुछ है, मन में कुछ हलचल है, कुछ बेचैनी है, कुछ कहना चाहते हैं आप। शायद आपने कभी किसी से ये नहीं कहा होगा और आप कहना चाहते हैं लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता है कि आपको प्यार हो जाता है और आप कहने से कतराते हैं क्योंकि हमेशा आपको रिजेक्शन ही मिला होगा या फिर आपको डर लगता है। मे बी इट्स योर फर्स्ट टाइम, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज़ है तो प्यार में सब कुछ पॉसिबल भी है। कभी कभी रिजेक्शन के बाद हमें इतना खूबसूरत रिलेशन मिल जाता है कि जिसकी कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी। तो चलिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड चलिए कीप मैनिफेस्टिंग अ ट्रू एंड अ वंडरफुल लव इन योर लाइफ और देखिएगा कमाल। चलिए आई जस्ट होप दैट आप प्यार की इस मैजिक को हर बार एक्सपीरियंस करते रहेंगे हमारे गीतों के जरिए।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: आपको भी किसी से मोहब्बत है या फिर मोहब्बत हो गई है या फिर आपको लगता है कि मोहब्बत हो रहा है, तो बस धीरे धीरे खुद को टाइम दीजिए, प्यार को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए और देखिए हाउ लव अनफोल्ड्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन इटसेल्फ। चलिए आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो टीम, लिसनिंग टू रेडियो मस्ती व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम, डेडिकेटिंग अ रोमांटिक सा गाना आपके पति आकाश के लिए। वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर बींग माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई ग्रेटेस्ट सपोर्ट एंड आई लव हिम सो मच फ्रॉम वाइफ कृति। कृति थैंक यू सो मच, ये देख के साफ आपका प्यार आपके पति के लिए झलक रहा है एंड आई जस्ट होप कि ऐसे ही आपस में आपका प्यार बढ़ता रहे और हमेशा आप एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहें। नमस्ते जी, आई एम रोशन हुकुम फ्रॉम बुनाकवे। हमेशा या तो आपके मैसेज आते हैं या फिर आपकी धर्मपत्नी का मैसेज आता है। थैंक यू सो मच हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर योर वाइफ रानी श्वेता हुकुम, जस्ट वॉन्ट टू टेल हर आई लव हर सो मच एंड हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच। वैसे कुछ कुछ लोगों ने अपने गाने की फरमाइशें भेजी हैं, अभी के लिए तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बट ट्रस्ट मी यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में कुछ और खूबसूरत गीत हैं। हेलो दिव्या, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके यहाँ बहुत ही ठंड है। यस यस आई नो, एंड इस ठंड वाले मौसम में आपको हमेशा अपने गले को वार्म रखना है और जितना हो सके एक पुलोवर, एक स्वेटर एंड जितना हो सके आप गर्म पानी का सेवन कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप कहते हैं कि नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली, ओके मे आई रिक्वेस्ट द सॉन्ग बूंद बूंद में फ्रॉम द मूवी हेट स्टोरी। एंड चलिए हम ट्राई करेंगे बट वी डोंट प्रॉमिस फॉर द टाइम बीइंग। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। चलिए यहाँ पर एक और मैसेज आया है, ज्योति जी आप हर्षाते बिना से नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा एंड मदब फैमिली के लिए।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
4: Radio Masti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: शायद ऐसी दीवानगी आपने देखी नहीं होगी और कभी-कभी ये दीवानगी हमारे अंदर ही छुपी होती है एंड प्यार में दीवानगी दीवानापन और थोड़ा सा और प्यार बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए इस प्यार को और भी मल्टीप्लाई और ऐड करने के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द 90s एरा विनोद राठौड़ एंड अलका याग्निक की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीवन कनेक्टेड विद रेडियो मस्त

जी थैंक यू सो मच आपने इतने प्यार से 7 बजे से लेकर अभी तक दिव्या का साथ दिया इन इवनिंग लाउंज. कल हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है सेम टाइम 7 से लेकर 9 बजे के बीच. तब तक के लिए आप दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: नमस्कार और स्वागत आप सभी का आर एम टू पर लेट नाइट ग्रूव्स, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से गुजरा होगा मुस्कुराहट के साथ। अब वक्त है कि दिन भर की भागा दौड़ी को पॉज दे दें और रात की सुकून भरी ये जो महफिल है या कहें कि ये जो प्रोग्राम है उसमें शामिल करें सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। स्वागत है आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स, जहां पर अगले तीन घंटे हम बात करने वाले हैं जिंदगी की, यादों की, सपनों की और बॉलीवुड की। तो तैयार रहिए, एक कप चाय या कॉफी बना लीजिए, लाइट्स को थोड़ा डिम कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं खूबसूरत म्यूजिकल सफर।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: दोस्ती
1: भाई, कभी कभी हम पूरे दिन दूसरों से बात करते रहते हैं लेकिन खुद से बात, अरे मन की बात करना भूल जाते हैं। आज सिर्फ एक मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, इस हफ्ते किस बात ने आपको सबसे ज्यादा खुश किया? छोटी सी अचीवमेंट हो या किसी अपने की मुस्कुराहट, हर वजह खास होती है। अपना जवाब लिखकर दिल पर प्यार की स्याही से नोट कर लीजिए।

0: और ये देखिए कि हर दिन आप कुछ ऐसा स्पेशल करते जाएंगे तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्टे।

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: भाई कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर नया दिन एक नई बिगनिंग लेकर आता है। अगर कल से आप एक नई आदत शुरू कर सकते हैं तो वो क्या होगी सोचिए। सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, या फिर हर दिन किसी एक इंसान की तारीफ करना, किसी को उसका ड्यू देना। अरे आज ही अपना प्रॉमिस लिखिए और उसकी शुरुआत कल से शुरू कीजिए। भाई म्यूजिक के साथ बदलाव भी और भी खूबसूरत हो जाता है।

0: नास्ती।
1: भाई हम अक्सर परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई बार वो इंतजार हमें रोक देता है। अगर दिल में कोई सपना है तो उसकी पहली सीढ़ी आज ही चढ़ लीजिए। छोटा कदम भी सफर की शुरुआत होता है, ये सोचकर एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत तो कीजिए। उसके बाद देखिए वक्त कटता जाएगा, आपको अपना ऑब्जेक्टिव साफ नजर आएगा।

कहते हैं कि रात का अपना एक जादू होता है। एक तरफ जहां पर आप सोचते हैं कि आज पूरे दिन क्या हुआ, वहीं पर आने वाले दिन में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या प्लानिंग है। तो बस सोच लीजिए इस हफ्ते आप क्या स्पेशल करना चाहते हैं या फिर किस चीज के पीछे पड़े हैं। वो कहते ना कि एक जो मंजिल है उसको पाना है या फिर सपना है जिसको सच करना है। फैमिली के साथ वक्त हो, दोस्तों के साथ मस्ती हो या सिर्फ घर पर आराम करना हो, भाई ये भी शामिल हो सकता है। चलिए साहब, जो भी है उसको जी भर के कीजिए। अभी म्यूजिक का मजा लीजिए।

कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड से दिल हल्का हो जाता है। आज रात सोने से पहले तीन चीजों के लिए थैंक यू जरूर बोलें। हो सकता है वो फैमिली हो, सेहत हो, एक दोस्त हो, या सिर्फ ये सुकून भरी रात हो। जब हम शुक्रिया कहना सीख लेते हैं, धन्यवाद कहना सीख लेते हैं, तो खुशियां खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे कभी कभी एक मौका मिलता है कि जब हम छोटे थे तो क्या क्या मस्ती करते थे और कैसे पेरेंट्स उस सिचुएशन से डील करते थे। आज आप खुद पेरेंट्स हैं और सोचते हैं बच्चों के बारे में तो अपना टाइम तो जरूर याद आता है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन की नहीं हम ऐसे नहीं थे, हम वैसे नहीं थे, लेकिन वक्त भी तो बदल गया है। लेकिन अपना जो रिश्ता है ना अपनों के साथ, ये कभी मत बदलेगा।
2: You're listening to RM2 Radio Masti।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, कभी कभी फोन को साइड पर रखकर सिर्फ आसमां देखना भी जरूरी होता है। खामोशी भी एक खूबसूरत मेलेडी होती है, बस उसे सुनने की फुर्सत चाहिए। आज रात अगर मौका मिले ना तो 2 मिनट के बालकनी या आंगन में जरूर बिताइएगा। हो सकता है वही 2 मिनट पूरे हफ्ते की थकान मिटा दे।

वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और रात अपनी सबसे खूबसूरत खामोशी में ढल रही है। ऐसे में वक्त मिलता है कि उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आज हुई, या फिर जहाँ पर आपको गुस्सा आया, यहाँ पर आपको कितना कंट्रोल अपने आप को करना पड़ा, लेकिन गुस्से से किसी का फायदा नहीं हुआ। जैसे कहते हैं, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, तो इससे किसी का भला हुआ नहीं। तो उस वक्त का गलत लिया हुआ फैसला अगर अभी भी बदल सकते हैं तो देर नहीं हुई। RM2, Radio Masti.

अच्छा कहते हैं कि वॉक द टॉक, मतलब अगर कोई ऐसा फोन आता है जिसमें आपको लैपटॉप या स्क्रीन के सामने रहने की जरूरत नहीं है तो क्यों ना थोड़ा सा चल फिर लें और बात कर लें। एक तो इससे आपकी मूवमेंट हो जाएगी, दूसरा कहते हैं कि जब आप घूमते हैं फिरते हैं और साथ में जैसे नेचर को देखते हैं या फिर किसी पॉजिटिव चीज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी थॉट्स भी ज्यादा आती हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है और मूवमेंट के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शेड्यूल भी।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, दिमाग में ये भी आता है कि कुछ अधूरे काम रह गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अधूरे हैं। अरे साहब, कोशिश कर रहे हैं तो हम पूरे हैं। खुद को थोड़ा क्रेडिट दीजिए, क्योंकि आपने एक और हफ्ता पूरी हिम्मत के साथ बिताना है। अभी तो मिडिल में ही पहुंचे हैं, तो वक्त अभी बाकी है। नया दिन होगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और साथ में अपनी मुस्कुराहट, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए होमवर्क करते रहो, जिंदगी की रेस में आगे बढ़ते रहो।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए साहब, ऐसी बातों बातों में पहुंच गए टॉवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी कि लेट नाइट ग्रूव्स R&2 पर। भाई दिन खत्म होते ही अगली प्लेलिस्ट के बारे फिर से चालू हो जाएगी। तो बस आप सभी का शुक्रिया कि इतने प्यार से आपने अपना साथ दिया, और साथ साथ में एक नया दिन आपके इंतजार में बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आप उसकी शुरुआत एक मुस्कान, एक पॉजिटिव सोच और RM2 के गानों के साथ करेंगे। अपनों का ख्याल रखिए, दिल से जिए और खुलकर हंसे। और याद रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अभी चाहूंगा आपसे इजाजत, मैं विकास, और सभी को स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। और फिर मुलाकात होगी कुछ नए गानों के साथ, एक अलग प्रोग्राम के साथ, लेकिन चैनल वही RM2। अभी के लिए नमस्कार।